बेटियों को विदा कर बारातियों से विदा मांगते हुए राजा जनक ने समधी तथा उनके स्वजनों का भरपूर सम्मान किया। मुनि मंडली के सामने शीश झुकाकर उनका आशीष प्राप्त किया और फिर जामाताओं को हाथ जोड़े अपने हार्दिक उद्गार प्रकट करते हुए बोले, आपने मुझे सब प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन बनाकर मुझे अपनाया। मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा अपरिमित है। मैं बार बार हाथ जोड़कर आपसे ये याचना करता हूं कि मेरा मन भूलकर भी आपके श्री चरणों को ना छोड़े। श्री राम ने पिता दशरथ, मुनिवर विश्वामित्र, कुलगुरु वशिष्ठ तथा पिता सदृश जनकराज का विनयपूर्वक सम्मान किया। मिथिलेश ने भरत को स्नेहपूर्वक प्रेमाशीष दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को आशीषा और फिर मुनिवर विश्वामित्र के चरणों में नतमस्तक हुए, जिनकी कृपा से ही आज उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बोले, हे स्वामी, आपकी अनुकंपा से ही मुझे ये सुख, सुयश और सभी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा. प्रशासनेन उक्तं यत् नीट प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे तदनुबद्ध विषयेषु च संसदि चर्चायै प्रशासनं सज्जमस्ति. ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् केन्द्रीय मन्त्री जितेन्द्र सिंहः लोकसभायां विपक्षनेतारं राहुल गांधिनम् आरोपितवान् यत् प्रशासनस्य आश्वासनस्य अनन्तरमपि सः नीट विषयक चर्चायाः स्वपूर्वामाग्रहात् निवृत्तः.
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है. प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे.
0: पूर्वाहणे कांग्रेस दलस्य अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अन्ये दल सदस्याः नीट विषयक चर्चामाधृत्य प्रदर्शनम् अकुर्वन्. केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंहः तथा केन्द्रीय गृह सचिवः गोविंद मोहनः लोक कल्याण मार्गस्थते प्रदर्शनस्थले कांग्रेस नेतृभिः सह मेलनं कृतवन्तौ. तत्रैव संसदि विपक्ष सदस्यैः पुनः पुनः कृतैः व्यवधानैः लोकसभा राज्यसभा च नीट प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणं समेत्य विविध विषयेषु ह्यः आदिवसं यावत् स्थगिते अभवताम्. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सद्य एव जाते नीट परीक्षाया प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे संलग्न जनान विरुध्य दृढ़ निग्रह कर्तुम अथ राष्ट्रस्य यूनाम हितस्य संरक्षणम च पुनः उद्घाटितवान. असौ अवदत् यत् भविष्ये एतादृशानां घटनानां निवारणाय प्रशासनेन बहवः उपायाः क्रियमाणाः सन्ति. प्रधानमंत्री एतत् संसद भवन परिसरे राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुतेः मंगल मिलन इति नामना अपि प्रख्याते संसदीय दलीयोपवेशने उक्तवान्. वार्ताहरान् संसूचयन् संसदीय कार्य

0: Para pemirsa yang terhormat, Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui postel atau email kami. Harap dicatat email kami sebagai berikut: air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini. Terima kasih banyak.
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का सामना उन्नति होटा से होगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा।
6: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसेडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
5: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। तीन दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच

0: विचार विमर्श होगा।
1: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवण को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
2: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित आईएनएस मलवान आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें आरबीओ 6000 रॉकेट और डीआरडीओ द्वारा विकसित टॉर्पेडोज की शक्ति है। जर्मनी और भारत द्वारा तैयार किए गए सोनार का उपयोग भी किया गया है। माहे श्रेणी के इस युद्धपोत तटीय और उथले समुद्र क्षेत्र में प्रभावी परिचालन के लिए बनाया गया है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई।
2: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुँचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ।
3: यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि सरकार सदन में नीट सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
4: और मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार।

0: रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावती सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं ना कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।
1: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमस्करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा भी की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नास।
3: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के धरने, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान संबंधी समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। नवभारत टाइम्स का शीर्ष समाचार है, जंतर मंतर पर लौटी भीड़, पीएम के घर के बाहर से विपक्ष के नेता हटाए। पत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन को भी सुर्खियों में जगह दी है, पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया घोर पाप। राजस्थान पत्रिका, लोकसत्य, दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला ने धरना दे रहे विपक्षी नेताओं की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने सिक्किम में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मजदूरों की मौत के समाचार को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पत्रों ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के आश्रितों को अनुग्रह राशि की घोषणा का उल्लेख करते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार और राहत अभियान का चित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव न्यूज स्तंभ के अंतर्गत राजस्थान के आंधी गांव का उल्लेख किया है, जिसे बायोटेक वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा ने 100% कचरा रहित और आत्मनिर्भर बना दिया है। पंजाब केसरी ने कमर्शियल जहाज पर हुए रूसी हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद रूसी राजनयिक को तलब किए जाने का समाचार सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर पर आधारित संपादकीयों को शीर्षक दिया है, सुरक्षा की फिक्र। पत्र का कहना है कि भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है। मगर सवाल ये है कि

0: देश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है?
1: और लीजिए अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का मुकाबला होगा उन्नति हुड्डा से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. President Draupadi Murmu calls for significant expansion of economic engagement between India and North Macedonia, urges businesses from both countries to move beyond trade and build long-term partnerships. India to host three-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. Indian Navy to commission indigenous anti-submarine warfare shallow water craft INS Malvan at Karwar in Karnataka today. Uttar Pradesh Cabinet approves scheme to provide free scooty to meritorious female students of the state. India reaffirms its commitment to rule-based multilateral trading system at WTO Trade Policy Review in Geneva, and PV Sindhu to take on compatriot Unnati Huda in China Open Badminton Tournament today. And now the news in detail. President Draupadi Murmu has called for expanding India-North Macedonia economic ties, urging businesses from both countries to move beyond trade and forge long-term partnerships based on investment, technology and innovation. Addressing the India-North Macedonia Business Forum in Skopje, President Murmu said her visit, the first ever by an Indian president to North Macedonia, reflects India's strong commitment to strengthening relations. President Murmu also invited North Macedonia to collaborate with India on digital public infrastructure, highlighting the success of India's UPI platform in promoting financial inclusion.
3: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
2: Our correspondent covering the president's visit to North Macedonia has filed this report.
4: President Murmu said India's pharmaceutical industry is well placed to invest in North Macedonia through joint manufacturing of medicines and medical devices for the wider Balkan and European markets. She also encouraged partnerships in food processing, cold chain logistics, renewable energy, artificial intelligence, cyber security, and startup ecosystems. The president invited North Macedonia to join initiatives such as International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, and the Global Biofuels Alliance. She also extended an invitation to participate in the World Audiovisual Entertainment Summit WEBS to be held in India next year. This is Subhasri Mahapatra from Skopje, North Macedonia.
2: Concluding her address, President Murmu urged businesses, investment agencies and industry bodies of both countries to build enduring partnerships through technology transfer, joint ventures and local value creation. India will host a three-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. It will bring together health ministers and senior health officials from BRICS member countries to deepen cooperation on health security, digital health, pandemic preparedness.

0: And finally, Financial Express mentions about a QS survey declaring Delhi the most affordable for students in the world, doing well on employer demand as well. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Drauppadi Murmu calls for significant expansion of economic engagement between India and North Macedonia, urges businesses from both countries to move beyond trade and build long-term partnerships. India to host three-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. Indian Navy to commission indigenous anti-submarine warfare shallow watercraft INS Malwan at Karwar in Karnataka today. Uttar Pradesh Cabinet approves scheme to provide free scooty to meritorious female students of the state. India reaffirms its commitment to rule-based multilateral trading system at WTO Trade Policy Review in Geneva. And PV Sindhu to take on compatriot Unnati Huda in China Open Badminton Tournament today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और शिमाली मकदूनिया के दरमियान इक्तसादी राब्तों में नुमाया तौसी की जरूरत उजागर की है और दोनों मुल्कों के कारोबारी इदारों पर जोर दिया है कि वो तिजारत से आगे बढ़कर तवील मुद्दती साझेदारी कायम करें। ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए सेहत की 3 रोज़ा मीटिंग आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। भारतीय बहरिया आज कर्नाटक में कारवार के मकाम पर मुल्क में ही बनाए गए आपदोस्त शिकन जंगी बहरी जहाज INS मालवान को अपने बेड़े में शामिल करेगी। उत्तर प्रदेश काबीना ने रियासत में अच्छी तालीमी कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटी फराहम करने की स्कीम को मंजूरी दे दी है। भारत ने जिनेवा में WTO के तिजारती पॉलिसी जायजे में जाब्तों पर मबनी कसीर रुखी तिजारती निजाम के तहत अपने अहद का अदा किया है और आज चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और शिमाली मकदूनिया के दरमियान इक्तसादी ताल्लुकात को वसत देने के लिए कहा है। उन्होंने दोनों मुल्कों के ताजिरों से कहा है कि वो तिजारत के अलावा भी सरगर्मियां जारी रखें और सरमायाकारी टेक्नोलॉजी नीज इख्तिरा पर मबनी तवील मुद्दती शराकत दारी कायम करें। इस गोबजे के मकाम पर भारत शिमाली मकदूनिया तिजारती फोरम से खिताब करते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि उनके दौरे से जो किसी भारतीय सदर का शिमाली मकदूनिया का पहला दौरा है इन ताल्लुकात को मुस्तकम करने के भारत के मजबूत इरादे की अक्कासी होती है। सदर मुर्मू ने शिमाली मकदूनिया को डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे में भी भारत के साथ शराकत दारी कायम करने के लिए मदऊ किया जिससे माली शमूलियत को फरोग देने में भारत के UPI प्लेटफॉर्म की कामयाबी का अंदाजा होता है।
3: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने IT, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
2: शिमाली मकदूनिया के सदर जमहूरिया के दौरे की खबरें देने वाली हमारी नमानिगार की एक रिपोर्ट।
4: सदर मुर्मू ने कहा कि भारत की दवासाजी की सनद शिमाली मकदूनिया में सरमायाकारी के लिए तैयार है। यह सरमायाकारी वसीतर बलकान और यूरोपीय मार्केट्स के लिए दवाएं और तिब्बी आलात मिलकर तैयार करने के लिए की जाएगी। उन्होंने खुराक की डिब्बाबंदी, गोल्डन चेन, लॉजिस्टिक, बार बार इस्तेमाल होने वाली तवानाई, मस्नूई जहानत, साइबर सिक्योरिटी और स्टार्टअप इको निज़ाम के शोबों में शराकत दारी की भी हौसला अफजाई की। सदर जमहूरिया ने शिमाली मकदूनिया को दावत दी कि वो बैनुल अक्वामी समशी इत्तेहाद, कुदरती आफात से मुताबिकत रखने वाले बुनियादी ढांचे और आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद जैसे मुश्तरका इकदामात में शिरकत करें। उन्होंने आलमी ऑडियल विजल और तफरीही समिट वेव्स में शिरकत की भी दावत दी जो भारत में अगले साल मुनक्किद होगी। शिमाली मकदूनिया से सुबह श्री की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
2: ब्रिक्स मुल्कों के वज़रा

0: सेहत की 3 रोज़ा मीटिंग आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। इसका मकसद सभी के लिए सेहत की सहूलियात, डिजिटल हेल्थ, वबाई बीमारियों से निपटने की तैयारी और मयारी हिफ्जान सेहत तक मुसावियाना रसाई दस्तयाब कराना है। इस मीटिंग में ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के वज़राए सेहत के साथ साथ महकमा सेहत के आला ओहदेदार शिरकत करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: ब्रिक्स वज़राए सेहत की 16वीं मीटिंग मजबूती, इख्तरा, बाहमी तआवुन और पायदारी के लिए तामीर थीम के जरिए अहम आलमी सेहत तरजीहात के सिलसिले में मुश्तरका इकदाम को आगे बढ़ाने के तई भारत के अज़्म की अक्कासी करती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सेहत की मरकजी सेक्रेटरी पूनिया सलीला श्रीवास्तव ने बताया कि ये वजारती मीटिंग हेल्थ सिक्योरिटी, वबाई बीमारियों से निमटने की तैयारी, डिजिटल हेल्थ, इख्तराज, सस्ती दवाओं की फराहमी और तिब्बी निज़ाम जैसे शोबों में बाहमी तआवुन को मजबूत बनाने पर मरकूज होगी। आज आला ओहदेदारों की मीटिंग के साथ ही बाज़ाब्ता प्रोग्राम का आगाज होगा, जिसके बाद कल सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकजी वजीर JP नड्डा की सदारत में ब्रिक्स वज़राए सेहत की 16वीं मीटिंग मुनाकिद होगी। इस मीटिंग में वज़रा अवामी सेहत से मुतालिक अहम आलमी और इलाकाई तरजीहात पर तबादले ख्याल करेंगे। दिल्ली से सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: भारतीय बहरिया INS मालवान को अपने कामकाज में शामिल करेगी। ये माहे तर्ज के आबदोज शिकन जंगी जहाज की दूसरी शक्ल है जो गहरे पानी में अपनी कारकर्दगी अंजाम देता है। ये तकरीब आज कर्नाटक के कारवार इलाके में मुनाकिद होगी। INS मालवान को कामकाज में शामिल किया जाना बहरी जहाजों को भारत में ही तैयार किए जाने वाले प्रोग्राम के तहत एक अहम कदम है। इस तकरीब की सदारत फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह करेंगे, जिसमें बहरिया के दीगर सरकर्दा अफसरान भी शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आला तालीम में खवातीन की शिरकत की हौसला अफजाई और खवातीन के तालीमी सिलसिले को मुनक़ता करने के वाकयात में कमी लाने के लिए एक बड़ी पहल के तौर पर रियासत की होनहार तालिबात को मुफ्त स्कूटी फराहम करने का फैसला किया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में काबीना मीटिंग में रानी लक्ष्मी स्कूटी योजना पर अमल दरामद से मुतालिक रहनुमा खतूत की मंजूरी दी गई। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: रियासत के आला तालीम के वजीर योगेंद्र उपाध्याय ने बताया है कि ग्रेजुएट लड़कियों में से शुरू में सरकर्दा 5% तालिबात की फहरिस्त तैयार की जाएगी। इसके बाद इनमें से तालिबात को उनकी काबिलियत की बुनियाद पर मुंतखब किया जाएगा। इस सरकारी स्कीम के तहत तालिबात को न सिर्फ स्कूटी फराहम की जाएगी बल्कि उन्हें बीमा, रजिस्ट्रेशन, हेलमेट, लाजमी मुतालिका सामान और 4 लीटर पेट्रोल भी फराहम किया जाएगा। माजूर तालिबात शहीद फौजियों और बेघर अफराद की बेटियों के लिए आमदनी की हद की शराइत में रियायत दी जाएगी। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
0: भारत ने उसूलों पर मबनी, शफाफ और किसी तरह की तफरीक से पाक कसीर मुल्की तजारती निजाम के तई अपने अजम को दोहराया है। भारत ने अपनी इस राय का इजहार आलमी तजारती तंजीम WTO में तजारती पॉलिसी के अपने 8वें जायजे के दौरान किया, जिससे आलमी तजारत में मुल्क के बढ़ते हुए रोल का अंदाजा होता है। तजारत के सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने आलमी तजारती निजाम के साथ भारत की सरगर्मियों और तजारती माहदों का एक वसी तर नेटवर्क कायम करके तजारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने की कोशिशों पर जोर दिया। उन्होंने नर्म रवि पर मबनी गैर मुल्की रास सरमायाकारी के निजाम और तरक्की पजीर मुल्कों के माबेन तआवुन की लगातार हिमायत पर भी जोर दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में तिजारत के महकमे ने कहा कि भारत सबकी शमूलियत वाली आलमी तरक्की को आगे बढ़ाने में एक काबिल एतबार और काबिल इन्हिसार शराकतदार है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने के हालिया केस में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुल्क के नौजवानों के मफादात का तहफ्फुज़ करने का अहद किया हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए कई इकदाम कर रही है। जनाब मोदी ने कल पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही, जिसे अब मंगल मिलन भी कहा जाता है। इधर सरकार ने कहा है कि वो नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने के केस और दीगर मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में बहस कराने के लिए तैयार है। कल शाम नई दिल्ली में नामा निगारों से बात करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा راہل گاندھی پر الزام لگایا کہ وہ سرکار کی یقین دہانی کے باوجود نیٹ سے وابستہ معاملات پر بحث کرانے کے اپنے

0: पहले के मुतालबे से पीछे हट गए हैं।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: इससे पहले दिन में कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के लीडरों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी के दीगर अरकान के साथ नीट मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। बाद में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के सरकर्दा लीडरों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, नीज समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव समेत अपोजिशन के सभी लीडरों को रिहा कर दिया, जिन्हें लोक कल्याण मार्ग के नजदीक एहतजाज करने पर हिरासत में लिया गया था। इधर दिल्ली पुलिस ने एक मुबैना वाकये में मौत होने के बारे में सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों को मुस्तरद कर दिया है। एक बयान में पुलिस ने कहा है कि किसी की भी मौत नहीं हुई है। पुलिस ने लोगों पर जोर दिया है कि वो गैर मुसद्दका जानकारी पर न तो भरोसा करें और न ही इसे शेयर करें। दिल्ली पुलिस ने आवाम को सलाह दी है कि वो दुरुस्त और मुसद्दका जानकारी के लिए सिर्फ सरकारी वसीलों पर भरोसा करें। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा कल नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए और नीट यूजी इम्तिहान का पर्चा मुबैना तौर पर लीक होने के मामले पर कौमी राजधानी में एहतजाज के दौरान जख्मी होने वालों की सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर मौसूफ ने अस्पताल में डॉक्टरों के साथ मीटिंग भी की। जनाब नड्डा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी गए और वहां दाखिल सभी जख्मी मुजाहिरीन से मुलाकात की। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और लोकसभा में अपोजिशन की लीडर राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया है कि वो पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान रखना पैदा करने के लिए तलबा को सियासी आलायकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब प्रधान ने कहा कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को नजरअंदाज करते हुए जनाब राहुल गांधी और कांग्रेस के दीगर रहनुमाओं ने वजीर आजम की रिहायशगाह के बाहर एहतजाज किया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जनाब धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार ने नीट मुआहदे पर जामे बहस कराने के लिए अपनी आमादगी से मुत्तला कर दिया था, इसके बावजूद कांग्रेस ने जमहूरी बहस मुबाहसे के बजाय सियासी तमाशा करने का रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस का मकसद तलबा के लिए कोई हल तलाश करना नहीं बल्कि सियासी सुर्खियों में आने के लिए रखना डालना था। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुम को कौमी राजधानी के सदर सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुंतकिल किए जाने का हुक्म दिया है। अदालत ने वांगचुक की अहलिया गीतांजलि अंगमो की दाखिल करदा दरखास्त की समाअत करते हुए यह हुक्म जारी किया है। मरकजी सरकार की तरफ से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल मुंतकिल करने पर सरकार को कोई एतराज नहीं है। फ्रांस की पार्लियामेंट ने एक खसूसी बिल को मंजूरी दी है जिसके तहत 15 साल तक की उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करने से बाज रखा गया है। फ्रांस की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के कानून साज अरकान ने कल इस बिल के हक में वोट दिया। चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के जुमरे में पीवी सिंधु का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा, जबकि आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की मर्दों की डबल्स जोड़ी रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे, नीज तानिशा क्रिस्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स डबल जोड़ी आज अपने अपने मैच खेलेंगी। इधर एचएस प्रणॉय पहले राउंड में ही मलेशिया के लियोन जुंग हाउ से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। खवातीन के सिंगल्स में देविका सिहाग थाईलैंड की खिलाड़ी बुसानन ओंगबाम रुंगफन से हार गई है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
2: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शेष सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। नीट पेपर लीक मामले के कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर नुमाया किया है। रोजनामा प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के तीन मुल्कों के सरकारी दौरे से मुतालिक खबर को अपने पहले सफ़े पर अहमियत के साथ शाये किया है। अखबार ने सदर जमहूरिया के इस बयान को नुमाया किया है कि इक्तसादी तआवुन भारत और शिमाली मकदूनिया के दो तरफा ताल्लुकात की इंतहाई अहम बुनियाद है। वजारत खारजा ने भारत में रूस के सिफारत खाने के नाजिमुल उमूर को तलब करके यूक्रेन में तजारती जहाज पर हमले में चार भारतीय मल्लाहों की मौत पर एहतजाज दर्ज कराया। इस खबर को प्रताप समेत कई अखबार ने अपने पहले सफ़े पर पेश किया है। इसके अलावा आज के अखबार की चंद अहम बैन अवी खबरों

0: की सुर्खियां इस तरह हैं, हूसियों के बहरी नाकाबंदी किए जाने पर सख्त जवाब दिया जाएगा, सऊदी अरब का इंतबाह।
1: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और शिमाली मकदूनिया के दरमियान इकतसादी रबतों में नुमाया तोसी की जरूरत उजागर की है और दोनों मुल्कों के कारोबारी इदारों पर जोर दिया है कि वो तिजारत से आगे बढ़कर तवील मुद्दती साझेदारी कायम करें। ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए सेहत की 3 रोजा मीटिंग आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। भारतीय बहरिया आज कर्नाटक में कारवार के मकाम पर मुल्क में ही बनाए गए आबदोज शिकन जंगी बहरी जहाज INS मालवान को अपने बेड़े में शामिल करेगी। उत्तर प्रदेश काबीना ने रियासत में अच्छी तालीमी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटी फराहम करने की स्कीम को मंजूरी दे दी है। भारत ने जिनेवा में WTO के तिजारती पॉलिसी जायजे में जाब्तों पर मबनी कसीर रुखी तिजारती निजाम के तई अपने अहद का इरादा किया है। और आज चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु का मुकाबला अपनी वतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के ठीक 8:45 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे सत्येंद्र नाथ द्वारा शहनाई पर बजाया राग, राग नट भैरव। आपके साथ संगत कर रहे हैं तबले पर राशिद नियाजी।

يد الله فوق

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया।

0: चलने वाली पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये उपलब्धि पर्यावरण अनुकूल परिवहन और मानवता के हित में वैकल्पिक हरित ऊर्जा के उपयोग की दिशा में भारत की प्रगति को और मजबूत करेगी। इसके बाद सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल किया। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
1: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भागीदारी की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने हिंद प्रशांत भू राजनीतिक परिदृश्य की समीक्षा की और हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत आसियान को केंद्र में रखते हुए स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति वचनबद्ध है। इस बैठक से अलग डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के तहत कल चंडीगढ़ में पारंपरिक पूरक और एकीकृत चिकित्सा पर ब्रिक्स सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की। ये सम्मेलन चंडीगढ़ में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्यक्रम के 4 दिवसीय व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा था। जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। तीर्थयात्रियों को यात्रा फिर शुरू होने के संबंध में आधिकारिक माध्यमों से अपडेट रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Both houses of parliament have been adjourned till 12 noon following opposition protests over various issues, including the NEET paper leak case. When the Lok Sabha assembled, Speaker Om Birla tried to take up the questioner, but the opposition members raised the issue of paper leak and student protest. Mr. Birla urged the opposition to cooperate in running the house, but the opposition members continued with the protest, which led to adjournment of the Lok Sabha till 12 noon. The same scene was also witnessed in the Rajya Sabha. When the proceedings began at 11 a.m., Chairman C.P. Radhakrishnan expressed grief over loss of lives during a tragic accident at the under-construction tunnel of the NHPC Teesta Stage 6 hydroelectric project in Sikkim. The House conveyed condolences to the bereaved families. After that, the chairman allowed the leader of the opposition, Mallikarjun Kharge, to speak on the matter he wants to raise.

0: घर आंगन।
1: कार्यक्रम घर आंगन में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ रेनू। तो कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर, साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी, यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। तो शुरू करते हैं अपनी बातों मुलाकातों का सिलसिला। ले दे के अपने पास फकत एक नज़र ही तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी और की नज़र से हम। जी हाँ, जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती को अनुभूत करने के लिए हमें अपनी सोच, अपने नज़रिए पर भरोसा करना चाहिए, न कि किसी और के नज़रिए या किसी और की सोच पर।

हाँ, सांवरिया घर आ। और अभी देखिए ना, जब बात अपने नजरिए, अपनी सोच और अलग सोच, अलग दृष्टि की होती है, तो बरसात को भी महसूस करने का हर किसी का नजरिया अलग होता है। और जैसा कि आपने इस गीत में महसूस भी किया होगा, ये गीत गाया था लता मंगेशकर ने फिल्म आशीर्वाद से। और अब बात, जो कि आज 22 जुलाई है, आप सब जानते ही हैं, और दिन विशेष की बात हम अपने कार्यक्रम में करते हैं, तो आज है जो 22 जुलाई है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी हमारे तिरंगे को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। 1947 में आज ही के दिन संविधान सभा में एक प्रस्ताव के माध्यम से समान आकार की पट्टियों वाले इस तिरंगे ध्वज को अपनाया गया। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि इसके

ऊपर केसरिया रंग है सबसे ऊपर, और फिर जो कि बलिदान और साहस का प्रतीक है, बीच में है सफेद जो कि शांति और सत्य का प्रतीक है, और नीचे का हरा रंग है हमारी समृद्धि और विश्वास का रंग। इसके बीच में जो अशोक चक्र है वो धर्म और प्रगति का प्रतीक है। और हमारे इस झंडे को डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम में एक साधारण किसान परिवार में जन्मे पिंगली वेंकैया एक महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और भूविज्ञानी थे। हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजाइन करने से पहले उन्होंने 1916 से 1931 तक लगभग 30 देशों के झंडों का गहन अध्ययन किया और नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया नाम से एक पुस्तक भी लिखी। फिर 1921 में विजयवाड़ा के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान उन्होंने अपना ये डिजाइन रखा, जिसमें गांधी जी के सुझाव पर कुछ संशोधन के बाद इसे स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रीय अंगीकरण दिवस के रूप में मनाया जाने वाला आज का दिन हमारे स्वाभिमान का दिन है, हमारे लिए गर्व का दिन है, और साथ ही अपने कर्तव्य को समझने का दिन भी है, और है राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, समर्पण और प्रेम की भावना प्रदर्शित करने का भी। तो भाई ये तो बात हुई हमारे झंडे की, और अब बात वही जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, जी हाँ, सवालों का, क्योंकि आजकल हम अपने कार्यक्रम में सवाल कुछ न कुछ सम्मिलित करते हैं जिस पर आप जवाब देते हैं, तो हम कुछ अपनी कहते हैं, कुछ आपकी सुनते हैं। तो आज आपको बताना है कि आपका पसंद, आपको कौन सी बुक या कौन सी किताब पसंद है, पसंदीदा किताब कौन सी है, और जो आपने कभी पढ़ी हो, आपके दिलो दिमाग पर छा सी गई हो, कोई भी कहानी, नाटक, उपन्यास, जीवनी या बाल साहित्य, कुछ भी जो आपने बचपन में पढ़ा हो और जिसकी याद आपको आज भी रह गई हो, तो लिख भेजिए। और हमारा पता वही है, fmgold@gmail.com। तो मुझे रहेगा इस पर आपके मेल्स का इंतज़ार।

0: अभी आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे से, गायक स्वर था रफ़ी और आशा भोसले का। और इसी के साथ बात अगर की जाए कि हमारा देश त्योहारों का देश है तो ये कहना कुछ गलत नहीं होगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सांस्कृतिक विभिन्नताओं वाले हमारे देश में अनेकों त्यौहार मनाए जाते हैं और उस राज्य की सांस्कृतिक झलक साफ साफ इन त्यौहारों में देखी जा सकती है। तो आज बात करते हैं मेला शारिका भगवती की, जिसे शारिका जयंती या हर नवमी भी कहा जाता है। ये त्यौहार कश्मीर घाटी के सबसे पुराने त्यौहारों में से एक है, जो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। और श्रोताओं, एक बात और मैं बता दूं कि हमारे साथ आपको जिसका सबसे ज्यादा इंतजार रहता है वो हमारी साथी जुड़ चुकी हैं, रश्मि जी। तो रश्मि जी, आप बताइए आगे की बात क्या है, क्या कहना चाह रही थी आप भी कश्मीर के बारे में कुछ?
1: कुछ कहने से पहले रेनू, तुम्हें, इंद्रप्रस्थ के सभी श्रोताओं को और एफएम गोल्ड के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं देख रही हूँ तुम लेकर जा रही हो कश्मीर।
0: हाँ भाई, बिल्कुल, आपकी भी पसंदीदा जगह है तो मुझे पता है। लेकिन फिर भी देखिए, मैं बात कर रही थी ना कश्मीर के त्योहारों की, तो उसमें एक त्यौहार जो माता शारिका भगवती के जो मेला लगता है उस बारे में मैं बता दूं कि माता शारिका कश्मीरी पंडितों की इष्ट देवी यानी कुल देवी कहलाती हैं, जो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का सम्मिलित रूप है और माता दुर्गा का अवतार भी मानी जाती हैं। उनके जन्मोत्सव के रूप में यहाँ एक मेले का आयोजन होता है। ये मेला श्रीनगर में हरि पर्वत, जिसे कि कश्मीरी भाषा में कोहे मारान कहा जाता है, और ये शारिका पर्वत या शारिका पर्वत भी कहा जाता है, वहीं पर स्थित है शारिका देवी का मंदिर जहाँ पर ये मेला आयोजित होता है।
1: और रेनू, इस अवसर पर जो माता को विशेष प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे ताहिर चरवन कहते हैं। ये हल्दी, तेल, नमक के साथ उबले चावल से बनता है। और ये जो मंदिर है वो डल झील के पश्चिमी भाग में हरि पर्वत की पहाड़ी पर, तुमने अभी बताया था, वो स्थित है। बहुत सारी सीढ़ियां हैं इस पर चढ़ने के लिए।
0: लेकिन देखिए, सीढ़ियां चढ़ने का एक फायदा और होता है, मंदिर की पूजा तो जो होती है वो तो होती ही है, साथ में ना वहां से कश्मीर का जो विहंगम दृश्य दिखाई देता है ना, उसका कुछ मुकाबला नहीं है। तो मैं तो कहूंगी कि जो भी श्रोता हमारे जाए वहां पे कश्मीर कभी, तो इस मंदिर के दर्शन तो करेंगे ही, साथ में उनको वो विहंगम दृश्य भी देखने को मिलेगा। और देखिए ना रश्मि जी, कहा जाता है ना कि वैसे भी कश्मीर के बारे में मशहूर है कि अगर फिरदौस वरुए जमी अस्त अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्त, यानी कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है।

0: कश्मीर की कली हूं मैं, जी हाँ, जंगली फिल्म से ये गीत सुना आपने लता मंगेशकर की आवाज में। और देखिए रश्मि जी, जो हमने प्रश्न अपने श्रोताओं से पूछा था तो उन्होंने जवाब देना शुरू भी कर दिया
1: तो
0: है
1: कौन
0: मेल
1: कौन
0: का।
1: से जवाब आए हैं आपके पास?
0: तो अभी तो जो मेरे हाथ में है ये नवीन भाटिया जी का है, और इन्होंने कहा है कि डायमंड और कॉमिक्स, कॉमिक्स जो है,
1: डायमंड कॉमिक्स इनको
0: हाँ
1: पसंद है।
0: कॉमिक्स इनको बहुत पसंद है भाई। बचपन में तो सबको ये किताबें पढ़ते थे, और बचपन की किताबें अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है।
1: और कह रहे
0: और
1: हैं चाचा चौधरी और साबू की जो
0: हाँ चाचा चौधरी,
1: कॉमिक्स इनको पसंद
0: सही
1: है।
0: बात है,
1: और भाई कॉमिक्स किसको नहीं पसंद, बचपन में तो ये जो शब्द चित्र
0: हाँ
1: जो बनते थे, चित्र बनते थे, चित्र कथाएं थी,
0: हम्म,
1: इनसे तो हम क्या कहते हैं पढ़ने की शुरुआत करते हैं बच्चे,
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: शुरुआत वहीं से होती है। और यही कॉमिक्स की आदत ना, धीरे धीरे कब आप साहित्यिक उसमें जुड़ जाते हैं
1: पता
0: आपको
1: ही नहीं
0: पता भी नहीं
1: चलता
0: चलता। इसीलिए
1: जी।
0: कहते हैं ना कि माता पिता को हमेशा प्रेरित करते रहना चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए। और इसके साथ ही देखिए ये महेश अग्रवाल जी हैं, इन्होंने नमस्कार तो भेजा ही है, और साथ में इन्होंने कहा है कि मेरी पसंदीदा किताब जो है वो गीतांजलि और
1: गोरा
0: गोरा रविन्द्रनाथ
1: जी,
0: टैगोर की। भाई बहुत बड़ी अच्छी बात है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की सबसे जो गीतांजलि जिस पर रुकी उन्होंने उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो ये किताब आपने पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है।
1: और ये
0: और
1: भी कह रहे हैं कि दोस्तों किताबों से मेरा जीवन में बहुत बदलाव आया है और बहुत कुछ सीखने को मिला है, और बदलते समाज की जो परिभाषा है वो अगर सीखना चाहे तो कोई रविंद्रनाथ टैगोर जी को जरूर पढ़े, ऐसा महेश अग्रवाल जी बहादुरगढ़ हरियाणा से कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात। और ये जो किताबों की जो बात कर रहे हैं ये तो वाकई सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ किताबों में से मानी जाती है।
0: और बिल्कुल सही बात है, और किताबें तो पढ़ने की आदत कैसे भी करके डालनी भी चाहिए। हर किताब आपको कुछ ना कुछ सिखा जाती है, कुछ ना कुछ दे जाती है। और इसी तरह से देखिए ये डी राजेश्वर राव जी हमारे साथ मेल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने कहा है कि प्राइड एंड प्रेजुडिस इन्होंने
1: हाँ
0: देखा
1: हाँ
0: है,
1: क्या बात है,
0: हाँ, और
1: वाह
0: मिसाइल मैन अब्दुल कलाम आजाद की इन्होंने बात की है कि इन्होंने उनके बारे में भी पढ़ना इनको बहुत अच्छा लगता था,
1: वाह
0: इन्होंने
1: वाह
0: पढ़ा है।
1: वाह।
0: तो
1: अगर याद हो रेनू तुम्हें, बचपन में धारावाहिक हम देखा करते थे दूरदर्शन के, तो तृष्णा इस नाम का धारावाहिक बना
0: हाँ,
1: था
0: उसमें
1: जी
0: तीन बहनों की
1: जी
0: वो
1: उन
0: कहानी
1: बहनों की
0: थी, हाँ
1: कहानी
0: हाँ
1: थी,
0: हाँ
1: और
0: जी जी
1: ये प्राइड एंड प्रेजुडिस पर ही आधारित था, और जो लिखने वाली जेन ऑस्टन, और बहुत खूबसूरत किताबों में से एक है, जरूर पढ़िएगा इसके
0: बिल्कुल
1: अलावा कोई किताब
0: बिल्कुल। और अभी के अभी श्रोता और जुड़ेंगे हमारे साथ, तब तक हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं।
1: जी
0: और देखिए अब एक जरूरी बात कि आजकल साइबर फ्रॉड या ठगी की घटनाएं रश्मि जी देखिए अक्सर बढ़ती जा रही हैं, देखने को ये समस्याएं सामने आ रही हैं। तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए पीड़ितों को मदद देने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा दो पोर्टल, MRM यानी कि मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल, और GRM यानी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म शुरू किया गया है।
1: भाई वाह, किताबों से आप सीधे लेके गई हमें कंप्यूटर की दुनिया में। भाई देखो MRM जो है इसमें साइबर धोखाधड़ी से पीड़ितों को उनकी जो ठगी गई रकम है ना, उनके डूबे पैसे, वो बिना किसी लंबी अदालती प्रक्रिया के

0: जो है वापस दिलाने में मदद करता है।
1: बिल्कुल। और देखिए ना, साइबर फ्रॉड के जो इसके शिकार व्यक्ति हैं, सबसे पहले साइबर हेल्पलाइन में उनको 1930 पर कॉल करना है या फिर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करानी है। इससे ठग के जो बैंक खाते हैं ना, वो पैसे जो है फ्रीज हो जाएंगे और गृह मंत्रालय से आपको एक संदेश प्राप्त होगा।
0: और इसके बाद ये जो MRM पोर्टल पर है, इस पर जाकर आप रेज फंड रिक्वेस्ट ये विकल्प चुन सकते हैं। अपनी शिकायत और ID और पैन कार्ड की सहायता से रिफंड क्लेम कर सकते हैं, सबमिट करें। और ये रिक्वेस्ट जो है वो प्राप्त करने के लिए आपको जाना है, हम वेबसाइट का नाम भी बता देते हैं, MRMNCRP.MHA.gov.in। भाई ये तो बहुत काम की जानकारी है रेनू, क्योंकि आजकल तो भाई किताबें जो नहीं पढ़ते तो फिर वो कंप्यूटर पे कहीं ना कहीं जाते ही है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: बिल्कुल सही बात है। और देखिए, जो दूसरी एक और हेल्पलाइन या दूसरा पोर्टल जो है, उसके बारे में भी हम बता दें कि आपका बैंक खाता गलती से होल्ड या ब्लॉक कर दिया गया है, तो आप इससे भी राहत पा सकते हैं। GRM यानी कि ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। GRM पोर्टल से ऐसे बेकसूर खाता धारकों को अपना बैंक खाता अनफ्रीज कराने की सुविधा देता है। तो इसके लिए आपको जाना है NCRP-grievance-redressal.MHA.gov.in पर।
0: हाँ
1: तो
0: एक बारी फिर हम बता देते हैं, NCRP-grievances-redressal.MHA.gov.in। तो श्रोताओं सावधान रहिए, जागरूक रहिए और जरूरत पड़ने पर इन सुविधाओं का भी जरूर उपयोग कीजिए।

0: पागल मौसम जादू, तू क्या लगा मेरे साथ क्या, वाह कितनी
1: क्या बात है मौसम का
0: खूबसूरत
1: लग रहा है असर हो
0: जी
1: रहा है। और
0: लता जी
1: देखिए
0: कह रही थी, फिल्म थी अभिनेत्री, और हम तो कहेंगे ये खूबसूरत मौसम बना रहे, बरसात होती रहे, संतुलित बरसात होती रहे, तो हमारा देश भी ऐसी प्रगति करता रहेगा। और हमारा जो सवाल था किताबों से जुड़ा, रेनू और क्या जवाब आए हैं हमारे श्रोताओं के?
1: हाँ, तो देखिए मेरे हाथ में ये एक मेल है, ये है चरण दास जी का मेल है। ये कह रहे हैं कि मुझे सभी तरह की किताबें पढ़नी पसंद हैं। बचपन में जो किताब ये ज़्यादा पढ़ते थे वो है चाचा चौधरी, मोटू पतलू किताबें पढ़ी हैं, और उपन्यास भी इन्होंने काफ़ी पढ़े हैं। इसमें सरला रानू जैसे मार्मिक उपन्यास भी इन्होंने पढ़े हैं। तो काफ़ी उपन्यास और किताबें का शौक जो इन्होंने शुरू से ही किया, और इनको फिर किताबें पढ़ने का शौक तो भाई जब बचपन से पढ़ा तो फिर
0: मैं
1: आ
0: देख रही
1: ही
0: हूँ
1: गया
0: हमारे
1: होगा।
0: श्रोता जो है वो बहुत सारी जो चित्र कथाएं हैं उनसे जुड़े हुए हैं, बचपन की ये मुझे लग रहा है कहानियां हैं। भाई किसे नहीं पसंद चाचा चौधरी, चंपक, चंपक तो बहुत ही खूबसूरत जिसे कहते हैं ना बाल बच्चों के लिए, और लोटपोट वगैरह, पंचतंत्र की कहानियां, भाई ये तो जरूरी है पढ़नी, ये तो ऐसी हैं जो चरित्र अगर
1: निर्माण
0: निर्माण में
1: करती हैं,
0: काम
1: और
0: आती हैं
1: देखिए ना
0: जी।
1: बच्चे ना हंसी हंसी में वो जो कहते हैं ना एंजॉय करते हुए मनोरंजन करते हुए कितनी बातें सीख जाते थे उसे
0: और
1: कुछ
0: अब जो
1: अंदाजा।
0: है वो कह रहे हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर, सोनीपत से, ये कह रहे हैं ये तो बचपन की किताबें थी। अब मैं जो ज्यादातर जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ा करता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, तो किताबों से जुड़े रहिए। और एक और हमारे पास मेल आ गया है जो आप हैं कामायनी, वो तो कहती हैं किताबें तो बहुत सी पढ़ी हैं, पढ़ती रही हूँ, लेकिन 9वीं क्लास में 2 किताबें पढ़ी थी जिन्हें पढ़ने के बाद मैं इतनी इमोशनल हो गई, भावुक हो गई कि हफ्तों लग गए उस भाव से उबरने में। वो कह रहे हैं कि पहली जो थी वो तो मुंशी प्रेमचंद की निर्मला, और दूसरी गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की, और मुझे किताबें बहुत पसंद हैं। और आप भी सजेस्ट कीजिए कि कुछ किताबों के बारे में बताइए, कामायनी कह रही हैं। भाई वाह कामायनी, हम समझ सकते हैं, कहते हैं ना चावल का एक दाना पता चल जाता है कि आप किस प्रकार की पाठिका हैं, तो आपकी किताबों की सिलेक्शन बहुत अच्छी है, खूबसूरत किताब है, बढ़िया किताब है, ऐसा उत्तम साहित्य जिसे हम कहते हैं वो है। तो रेणु जी आप क्या किताब जो है दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को बताने जा रही हैं कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए?
1: बिल्कुल, जैसे कि आप इन्होंने कहा ना कामायनी जी ने कि वो गुनाहों का देवता से

0: शुरुआत की थी इन्होंने, तो भाई देखिए वो एक जैसे कहते हैं कि यंग जनरेशन की एक बुक थी और बहुत भावुक, बहुत ही मार्मिक प्रेम कहानी थी जिसमें एकदम से श्रोता बिल्कुल डूब से गए। धर्मवीर भारती ने बिल्कुल नब्ज को पकड़ा हुआ था उसमें, जैसे कह सकते हैं। तो वो
1: जी
0: किताब तो शुरुआत की थी, तो मैंने भी उसी से शुरुआत की थी, इसलिए मैं मुझे भी याद आ गई। और मैं कहूंगी कि अगर आप साहित्य की शुरुआत कर रहे हैं तो प्रेमचंद को पढ़ना बिल्कुल ना भूलिए। प्रेमचंद की गोदान, गबन, निर्मला, जैसा कि इन्होंने भी पढ़ा था, तो इस तरह की किताबें शुरू कीजिए। जयशंकर प्रसाद को पढ़िए, उनकी कमाईनी आंसू, कविताओं से भी शुरुआत कर सकते
1: जी
0: हैं आप।
1: बिल्कुल
0: और जो उनकी नाटक है, नाटक ध्रुव स्वामी वगैरह नाटक अगर आप पढ़ते हैं तो इतना उसका शब्द भंडार, इतना अच्छा शब्दकोश है कि वो बढ़ जाता है और आप अपने आप कुछ ना कुछ आप शब्द भंडार अपने बढ़ाते ही हैं।
1: और अगर हम आधुनिक साहित्य की तरफ आते हैं तो आधुनिक साहित्य में आजकल बहुत अच्छी अच्छी किताबें, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिख रही हैं। मनीषा कुलश्रेष्ठ बहुत अच्छी कहानियां और उपन्यास लिखती रही हैं। हमारे अपने आकाशवाणी की बहुत लेखक लेखिकाएं हैं जो बहुत प्रतिष्ठित लेखक लेखिकाएं हैं। और जो यात्रा वृत्तांत है वो पढ़ने की कोशिश कीजिए, उनके जरिए आप देख पाएंगे कि लेखक लेखिका के नज़रिए से, जैसे मनीषा जी की किताब है कि होना यात्री कैलाश का, जब वो कैलाश मानसरोवर जब गई थी, तो ये यात्रा वृत्तांत है, आप चाहें तो इसे भी पढ़ सकते हैं। आगे चलें रेनू
0: बिल्कुल, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ कला और संस्कृति की बात भी कर ली
1: जी
0: जाए,
1: जी
0: साहित्य की
1: बिल्कुल
0: बात तो हो ही रही है। तो बात करते हैं बिहार के गया जिले की, जिसके लगभग 300 साल पुरानी पत्थरकट्टी शिल्प कला को अभी हाल ही में GI टैग मिला है।
1: वाह
0: और पत्थरकट्टी की शिल्प परंपरा का इतिहास बहुत गौरवशाली है। माना जाता है कि गया जी के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के निर्माण के दौरान रानी अहिल्याबाई होलकर ने जयपुर से करीब 300 शिल्पकार के परिवारों को यहाँ बुलाया था। मंदिर निर्माण के बाद कई परिवार यहीं बस गए और पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को जीवित रखते रहे।
1: और गया जिले के पत्थरकट्टी गांव को, जो ये पत्थर शिल्प है ना रेनू, आज अपने उत्कृष्टता के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये गांव। और यहाँ के जो कारीगर हैं वो काले ग्रेनाइट पत्थरों से भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, देवी देवताओं और अन्य कलात्मक प्रतिमाओं का निर्माण करते हैं। और जो काला पत्थर होता है, ग्रेनाइट यानी, ये बहुत ही मजबूत पत्थर होता है रेनू। कल्पना करो कि इसको छीलना, यानी कि उसको जो आकार देना, कितना कठिन
0: कितना
1: कार्य
0: कठिन
1: है।
0: हो, कितनी तन्मयता लगती होगी, कितनी
1: तन्मयता,
0: मेहनत
1: जी
0: लगती है,
1: जी
0: और लेकिन ये
1: बिल्कुल
0: कलाकार अपने जज्बे से इस काम को कर सकते
1: भाई,
0: हैं,
1: एक
0: कर
1: देखिए ना
0: गुजरते
1: इस
0: हैं।
1: हस्तकला में, कलाकार छेनी और हथौड़ी से जो है वो ऐसा घर्षण करता है उस पत्थर का कि वो आकार ले लेती है, और कई बार उसमें तो हम कहेंगे भाव भी प्रकट हो जाते
0: बिल्कुल, तो ये
1: हैं।
0: वाली बात जो
1: जी
0: है ना कि पाषाण हृदय, ये चीज नहीं, इस
1: जी
0: लागू नहीं होती है, क्योंकि पाषाण को भी तराश करके उसमें जीवंतता या बिल्कुल जीवन उसमें डाला जा
1: और ये
0: सकता
1: काम करते हैं
0: है।
1: पत्थर चट्टी के कट्टी के गांव के जो शिल्पकार है वो
0: बिल्कुल,
1: करते
0: और आप
1: हैं।
0: देखिए ना, जिनको GI टैग जब मिल गया है तो वैश्विक स्तर पर इस कला की और पहचान बढ़ेगी और स्थानीय शिल्पकारों को के आय में वृद्धि भी होगी।

0: अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी, गीत गाया पत्थरों ने, आवाज़ महेंद्र कपूर आशा भोसले की। और देखिए रश्मि जी, बात अब किताबों की चल रही है, हमारे श्रोता तो अपने पसंद के बारे में बता ही रहे हैं हमें, तो कुछ और किताबें जो मुझे याद आ रही हैं, मैं सोच रही हूँ उसके बारे में भी दर्शकों श्रोताओं को बताया जाए। तो जैसे राग दरबारी की बात मैं अगर करूँ, श्री लाल शुक्ल की ये किताब जो है वो मैं रिकमेंड करूँगी कि पढ़ना चाहिए इसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो है एक सामाजिक और राजनीतिक जो व्यंग के माध्यम से उन्होंने जो बातें कही हैं वो हिंदी साहित्य के इसीलिए सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में इसकी गिनती होती है। और स्वतंत्रता के बाद जो ग्रामीण जीवन था उसकी व्यवस्था पर इन्होंने अपने स्टाइल में, अपनी शैली में बहुत अच्छे शब्दों के माध्यम से बात रखी है। तो एक किताब ये है राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की, और दूसरी मैला आंचल
1: जी
0: फणीश्वर नाथ रेणु की। और फणीश्वर नाथ रेणु जैसा कि आंचलिक उपन्यासकार और लेखक माने ही जाते हैं, हम सबको पता ही है। और इनकी ये मैला आंचल जो किताब है वो एक उपन्यास है जो ग्रामीण परिवेश पर आधारित है, और मेरीगंज गांव के जीवन की संस्कृति और समस्याओं का जीवंत चित्रण उसमें इन्होंने किया है। और फणीश्वर नाथ रेणु की जो याद आई मुझे एक कहानी उनकी, मारे गए गुलफाम, पढ़ी होगी आपने, उसमें एक फिल्म भी बनी थी ना, तीसरी कसम।
1: बिल्कुल
0: हाँ, तो
1: जी, सही कह रहे हैं आप।
0: वो जो है
1: देखिए, जो साहित्य है ना, वो तो हम कहेंगे उर्वर भूमि है फिल्म की, रचनाओं की, कहानियों की। और अगर मैं कहूँ तो मैंने बचपन से ही शरद साहित्य पे प्रति बहुत आकर्षण महसूस किया है। शरद चंद्र की जो कहानियाँ हैं, जो उनके उपन्यास हैं, वो तो जो है ना अप्रतिम है। उसमें जीवन की बहुत सारी सीख है, जीवन जीने के तरीके हैं, उसमें गलतियाँ भी हैं, उसमें माफियाँ भी हैं। और अगर एक बार आप उन किताबों से जुड़ जाए ना, तो वो इतनी आसान है पढ़ने में रेनू,
0: सही बात है।
1: जो उनसे जुड़ा तो मुझे नहीं लगता कि कभी छूट पाया उनसे, है ना,
0: बिल्कुल,
1: जो उतरा वो
0: एक बार
1: डूब
0: डूब गया
1: गया।
0: क्योंकि एक बार जब जुड़ाव हो जाता है तो
1: जी
0: फिर वो जैसे कहते हैं कुछ मिसिंग सा लगता है, लगता है कि अगर कुछ किताब पढ़ने के जो लोग आदी लोग हैं उनसे आप पूछिए तो अगर उन्होंने 15 दिन या 1 महीना कोई किताब नहीं पढ़ी तो उन्हें लगता है कुछ कुछ खोया खोया सा है, कुछ अपना सा उन्होंने नहीं किया, कुछ अपने साथ उन्होंने वक्त नहीं बिताया। और किताबों के साथ देखिए रश्मि जी कितनी आसान चीज है कि डिजिटली उन्हें जैसे चार्ज की जरूरत होती है या कहीं पे मतलब आप ले जाते हैं तो उसके लिए सोचना पड़ता है, लेकिन किताबें तो आप कहीं भी ले जाइए उसके लिए कोई उसकी जरूरत नहीं है, बिजली हो ना हो, किसी भी दिन में कहीं भी आप साथ में
1: और
0: ले
1: हम
0: जाइए,
1: अभी तो
0: पढ़िए।
1: हम ये बात कर रहे हैं जो जो काल्पनिक कथाएं हैं, काल्पनिक उपन्यास की, भारतीय साहित्य, भारतीय दर्शन, भारतीय वेदांत से जो जुड़ी किताबें हैं, वो तो हमारी संस्कृति की धरोहर हैं। जो ग्रंथ है यहाँ के, अब देखिए मानस है तुलसी की,
0: जी,
1: जो वो तो जिसे कहते हैं ना जीवन जीने की प्रेरणा, किस प्रकार जीवन जिया जाता है, किस प्रकार परेशानियों का सामना सत्य और के साथ किया जाता है, तो रामचरितमानस यही तो हमें सिखाता है।
0: बिल्कुल यही सिखाता है कितना जीवन जो है
1: इसीलिए घर घर में
0: घर
1: अभी
0: घर
1: भी
0: में है,
1: पढ़ा
0: और
1: जाता है।
0: हाँ
1: जी
0: बिल्कुल श्रद्धा के साथ भी रखते हैं लोग
1: जी
0: उसको, पढ़ते भी हैं, गुनते भी हैं।
1: जी
0: तो बिल्कुल, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बात अब कुछ अखबारों की भी कर ली जाए,
1: हाँ, यानी कि आप किताबों से अखबारों की
0: क्योंकि
1: तरफ
0: बिल्कुल
1: ही ले
0: पढ़ने की बात है
1: जाएंगे।
0: तो हो सकती है। और देखिए ना, एक दिलचस्प बात है कि समाचार पत्र के बारे में कभी आपने गौर किया है कि वो इतने बड़े पेजेस पे क्यों छापे जाते
1: और
0: हैं?
1: सच बताऊं,

0: बड़े पेजेस होते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं अरिना।
1: अच्छा, आपको अच्छे लगते हैं और देखिए कई लोगों को पसंद है ये बात, लेकिन पता है इसके पीछे ना, इसकी वजह कोई पत्रकारिता से जुड़ा हुआ नियम नहीं है, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत का एक कानून था जिसकी वजह से 1712 में ब्रिटेन सरकार ने इसको एक स्टैंप ड्यूटी लगाई थी, जिससे कि जो है वो टैक्स वसूला जाता था, इसलिए इसकी शुरुआत वहीं से हुई थी बड़े पेजेस की। और
0: तो इसीलिए बड़े आकार के कागज इस्तेमाल
1: किए जाने लगे। और देखिए इसके कई फायदे भी हैं, जैसे कि अगर आप बड़े पेजेस पे जब छपता पेपर छपता है ना, तो उस पे जो है बड़े कागजों के उपयोग से मुद्रण और वितरण की लागत कम आती है। ब्रॉडशीट आकार का संपादकों को एक पृष्ठ का महत्वपूर्ण हेडलाइन, विस्तृत लेख और तस्वीरों के साथ दिखाने की सुविधा देता है।
0: और रेनू सबसे बड़ी बात यह है भाई, देखो जो बड़े विज्ञापन आते हैं ना, वो छापने के लिए भी अधिक जगह मिलती है, जो अखबारों की आय का मुख्य स्रोत है। और बड़े कागज की जो एक बड़ी शीट है उस पर छपाई करने से जो फोल्डिंग और बाइंडिंग का जो खर्चा है वो भी बचता है। तो हम तो ये कहेंगे कि बड़े आकार को पारंपरिक रूप से गंभीर या विस्तृत पत्रकारिता का प्रतीक माना जाता है, और यहाँ पर एक ही पृष्ठ पर कई महत्वपूर्ण खबरें एक साथ देखी जा सकती है। तो हम देख रहे हैं रेनू, आज आप हमारे श्रोताओं को जो है वो किताबों में और पन्नों में, कागजों में, मतलब क्या चाह रही हैं?
1: बस यही कहेंगे कि देखिए डिजिटल दुनिया में तो आप हैं ही, आप किताबों से भी जुड़े थे, बस याद करने की जरूरत है कि भाई इसके पहले वही किताबें ही दुनिया हुआ करती थी।
0: जी बिल्कुल, तो ठीक है, लेकिन अभी आप तड़पाओ मत, अभी तो आप गीत सुना दो।
1: बिल्कुल, तो ये गीत आपके लिए।

0: जी, और रेनू बहुत सारी और हमारे पास ईमेल्स आ गई हैं भाई, बहुत श्रोता बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हैं। आप हैं उमेश कुमार खयाला से, आपको भाई बचपन में ले जा रहे हैं वापस, चंपक पढ़ते रहे हैं। और शीशवाल वर्धन जी कह रहे हैं कि मुझे जो है मुंशी प्रेमचंद की कहानियां, ठाकुर का कुआं पढ़ी थी जो मेरे दिल पर बहुत छाप छोड़ गई। आप हैं गाजियाबाद से शीशपाल अकेला जी। इसके अलावा उग्रसेन यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं रेनू, वो कह रहे हैं नमस्कार, और कह रहे हैं कि भाई मुझे शरद साहित्य बहुत पसंद है और छोटी छोटी जो कहानियां होती है ना वो मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी भी बहुत अच्छी किताब थी। तो भाई ऐसे ही पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए उग्रसेन यादव जी। और इसके अलावा जो है रेनू, आप कुछ कहना चाह रही हैं?
1: हाँ बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने कमायनी के बारे में कहा है तो महाकाव्य की श्रेणी में उसको गिना जाता है, तो बिल्कुल जरूर पढ़िए। और साथ ही मैं कुछ आधुनिक जो हमारी लेखिकाएं हैं उन्होंने भी काफी अच्छा लिखा है, जैसे अभी इस समय दो किताबें मुझे याद आ रही हैं, चितकोबरा है मृदुला गर्ग की लिखी हुई, और इसके साथ ही गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्रेयी पुष्पा की, तो ये
0: जी
1: स्त्री विमर्श को जन्म देती हुई बहुत ही अच्छी कहानियां हैं इसमें,
0: जी इस
1: तो
0: समय
1: इसको
0: जो
1: जरूर
0: स्त्री,
1: पढ़िए।
0: जो ममता कालियां हैं और बहुत सारी जो हमारी लेखिकाएं हैं, अच्छा अच्छा लिख रहे हैं। गीता श्री बहुत अच्छी
1: जी
0: कहानियां लिख
1: बिल्कुल
0: रही हैं।
1: बिल्कुल, बातें तो रश्मि जी होती रहेंगी,
0: तो हम
1: लेकिन
0: विदा कह
1: अब
0: देते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है, तो मुझे यानी रेणु को दीजिए और
0: जी रेणु जी, आप और रश्मि कुकरेती को दीजिए अनुमति। अनुमति नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: हर आंगन आपके अस्तित्व, आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा, पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। कार्यवाही शुरू होते ही सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये उपलब्धि

0: करते हुए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार में आईएनएस कादंबा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। आईएनएस मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
1: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैड कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की। बैठक के दौरान उन्होंने हिंद प्रशांत पर आसियान के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए क्षेत्रीय चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया। समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा आपात कार्रवाई जैसे विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। तीर्थयात्रियों को यात्रा फिर शुरू होने के संबंध में आधिकारिक माध्यमों से जानकारी लेने की सलाह दी गई है। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Both houses of parliament have been adjourned till 2 p.m. following opposition protests over various issues, including the NEET paper leak case. When the Lok Sabha reassembled after the first adjournment at 12 noon, the opposition was on the feet protesting on the paper leak issue. Speaker Om Birla urged the opposition to cooperate for smooth functioning of the House. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that the government is fully prepared for a discussion on the NEET paper leak issue. He stated that the government is ready for discussion since day one. The minister said any discussion in the House must be conducted under established rules and requires proper arrangements. He requested floor leaders of all parties for the duration and the rule under which the discussion will be held. Mr. Rijiju emphasized that the government wants a meaningful and constructive discussion involving all sides, keeping in mind the future of the youth of the country. K.C. Venugopal of the Congress and Akhilesh Yadav of the Samajwadi Party raised the issue of student protests. Speaker Om Birla said the government is ready for discussion on the issue and everyone must come together for the timing of the discussion. As the pandemonium continued, Mr. Birla adjourned the house till 2 p.m. The same scene was also witnessed in the Rajya Sabha. The Indian Navy inducted the second anti-submarine warfare shallow water craft of the Mahe class INS Malvan at Karwar in Karnataka today. This is a significant achievement in India's indigenous warship building. Air Chief Marshal A.P. Singh, Chief

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज जो हमारी फिल्म है वो है एक फूल दो माली। ये फिल्म प्रेम, त्याग, मातृत्व और पितृत्व की भावनाओं पर आधारित है। कहानी एक ऐसे बच्चे की इर्द गिर्द घूमती है जिसकी परवरिश करने वाले और उसके जैविक पिता दोनों उसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इसी कारण फिल्म का शीर्षक एक फूल दो माली रखा गया। यानी एक फूल यानी वो बच्चे और उसकी देखभाल करने वाले दो माली। तो श्रोताओं, सुनते हैं इस फिल्म का अगला गीत। और जो ये अगला गीत है वो एक ऐसा गीत है जो एक पिता के अपने बच्चे के प्रति स्नेह, गर्व और ममता को बहुत ही सरल और भावपूर्ण शब्दों में व्यक्त करता है। अगर उनकी पंक्ति, जो कि उनकी पंक्ति है, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, जी हाँ, हम इसी गीत के बारे में बात कर रहे हैं। ये पंक्ति इस बात का प्रतीक है कि बच्चे की तुलना किसी एक सुंदर या मूल्यवान वस्तु से करना भी कम पड़ जाता है। मन्ना डे की भावपूर्ण गायकी जिसने गीत को अमर बना दिया, मधुर और सहज धुन जो आज भी उतनी ही लोकप्रिय है। तो आइए सुनते हैं यह गीत मन्ना डे की आवाज़ में।

श्रोताओं, अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो सोमना एक गरीब औरत है जो अपनी विधवा माँ लीला के साथ भारत और नेपाल की पहाड़ी इलाके में रहती है। वहीं अमीर विधुर कैलाश नाथ कौशल के सेब के खेत में काम करके गुजारा करती है। कौशल एक माउंटेनियरिंग स्कूल भी चलाते हैं जहां अमर कुमार उनके स्टूडेंट में से एक है। अमर के क्लाइंबिंग एक्सपेडिशन से लौटने के कुछ समय बाद ही सोमना और अमर मिलते हैं और वे प्रेम में पड़ जाते हैं और शादी करने का फैसला करते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उन्हें खबर मिलती है कि अमर और दूसरे क्लाइंबर मारे गए हैं। सोमना के साथ शमशेर सिंह छेड़छाड़ करते हैं। जब कैलाश को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है तो वह उसे बचाने आता है और उसे शादी करने का ऑफर देता है। उनकी शादी हो जाती है और सोमना एक लड़के बॉबी

जन्म देती है। शमशेर को गिरफ्तार कर 6 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। कैलाश जो एक एक्सीडेंट के बाद बच्चे ना होने के कारण से उन्होंने वो पिता बनकर ही खुश हो जाते हैं, बॉबी के पिता। जी हाँ, वे बॉबी से बहुत प्यार करते हैं और उसे अलग नहीं हो सकते। 5 साल बाद बॉबी का 6वां जन्मदिन मना रहे सोमना और कैलाश को तब झटका लगता है जब पार्टी में अमर आ जाता है।

बॉबी अपने पिता कैलाश से प्यार करता है, लेकिन अपने असली पिता अमर के करीब आने से खुद को रोक नहीं पाता, जिससे सोमना और कैलाश बहुत परेशान होते हैं। सोमना बॉबी को अमर से मिलने से मना करती है, लेकिन कैलाश उसका साथ देता है और सोमना से कहता है कि वह बॉबी को खुश देखना चाहता है। सोमना अमर से पूछती है और मानती है कि वह नहीं चाहती कि वह उससे मिलने आए। अमर इससे

परेशान हो जाता है और बॉबी से मिलना बंद करने की कसम खाता है। कैलाश के साथ घूमते समय बॉबी अमर को देखता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी वजह से वह डायनामाइट जोन में फंस जाता है और इस चक्कर में खुद को घायल कर देता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि उसकी हालत गंभीर है क्योंकि उसका बहुत खून बह गया। कैलाश खून देने की पेशकश करता है लेकिन उसका खून का टाइप मैच नहीं करता। फिर अमर अपना खून देता है जिससे बॉबी की जान बच जाती है। कैलाश खुश है कि बॉबी जिंदा है लेकिन अमर के उसे ले जाने के डर से वह बाहर नहीं निकल पा रहा है। अमर को सारी बातें समझ में आती है और उसे पता चलता है कि बॉबी सच में उसका बेटा है। जैसा कैलाश को डर था वह बॉबी के बेहोश होने पर उसे ले जाना आता है। सोमना उसे रोकती है और वह समझाती है कि बॉबी ना तो उसका बेटा है और ना ही उसका बल्कि कैलाश का बेटा है। वह उसे समझाती है उसने सच जानने के बावजूद उससे शादी करके उसकी इज्जत बचाई और वह बॉबी को किसी और से ज़्यादा प्यार करता था, उसे अपनी बेटी की तरह पाला। कैलाश चुपके से पूरी बात सुन लेता है। अमर इससे दुखी होकर अपने किए पर पछताता है और कैलाश को बॉबी रखने देने का फैसला करता है और उसे हमेशा के लिए छोड़ जाता है।

0: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
0: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू

0: है स्मार्ट बनो कूल रहो।
1: श्रोताओं हमारे पास भर भर के संदेश आ रहे हैं, तो चलिए पहले उन संदेशों को पढ़ ले। हमारे पास जो पहला संदेश आया है वो आया है सुदर्शन शाह का और मध्य प्रदेश नीपा नगर मध्य प्रदेश से, और इनके साथ हैं प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह और पल्लवी शाह। अगला जो संदेश है वो है नितेश देवांगन का और इनके साथ है दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन, कृष्ण देवांगन, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से। अगला संदेश है वो है स्वर्ण सिंह का और इनके साथ है दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से। अगला जो संदेश है वो है सोमदत्त नावा जिला पटियाला पंजाब सिंह के साथ है कैरव ज्योति रानी, गुरमंद कौर मनु। अगला संदेश है सतीश अनेजा का और इनके साथ है बिमला अनेजा। अगला संदेश है कमलकांत गुप्ता का और इनके साथ है श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता पिपरिया से, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं। अजीत भावसर का संदेश आया है, इनके साथ है विरमगान गुजरात से, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं प्रमिला भावसा, अजीत भावेश भावसार, और वो हमारे संदेश को सुन रहे हैं। अगला संदेश जो है वो सुभाष जी का आया है, इनके साथ है बिमला गोदारा, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं गांव हीरावाली फजल का पंजाब से, और इंदु पार्वती हिमांशु गोदारा, और ये भी हमें लिखकर भेज रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम लाइव सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र चीपा का अगला संदेश आया है, इनके साथ है कपिल चीपा, पूजा परिहार, भोपालगढ़ राजस्थान से। इन्होंने लिखा है कि आप आज चर्चा कर रहे हैं फिल्म जगत की बेहतरीन फिल्म एक फूल दो माली की, इन फिल्मों के बारे में बेहतरीन बातें बता रहे हैं और रोचक किस्से नगमे भी सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हीरामणि वर्मा का अगला संदेश है और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से। अगला संदेश जो है वो है डोलराना और इनके ये हमें लिखकर भेज रहे हैं नेहरू विहार दिल्ली से। सुरेश यादव हमें संदेश भेज रहे हैं और इनके साथ है अड़ी यादव, सोनल प्रसाद यादव नेहरू चौक से, वो हमें लिखकर भेज रहे हैं भंवरपुर छत्तीसगढ़ से। राधेश्याम देवांगन और चंपा देवांगन हमें लिखकर भेज रहे हैं। आर कुमार का संदेश है वंडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। अगला संदेश जो है वो है कुमार हेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, आदिब और परिवार वाले कोई भी गीत में शामिल करे। और जो अगला संदेश है वो नरेंद्र का आया है और ये हमें लिखकर भेजा है राजस्थान से। प्रकाश वर्मा जी ने हमें अगला संदेश भेजा है छत्तीसगढ़ पलारी से, इनके साथ है प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा। और अगला संदेश जो है श्रोता, अगला संदेश हम पढ़ेंगे लेकिन फिलहाल सुनते हैं इस फिल्म का ये अगला गीत।

0: तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने तलबा के एहतजाज करने का मामला उठाया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सरकार इस मामले पर बहस के लिए तैयार है और हर एक को मिलजुल कर बहस का वक्त तय करने के लिए आगे आना चाहिए। बीजेपी ने आज कहा कि मरकज तलबा के साथ है और मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल का तहफ्फुज उसकी आला तरीन तरजीह है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की कयादत वाली बीजेपी सरकार ने विकसित भारत को मुस्तहकम करने के लिए नौजवानों की कयादत पर मबनी तरक्की का मंत्र रखा है। मोहतरमा स्वराज ने कहा कि नीट का दोबारा इम्तिहान महज 37 दिन में कराया गया और 25 दिन के अंदर नतीजों का ऐलान कर दिया गया। उन्होंने इस बात को भी उजागर किया कि हुकूमत ने फौरी कार्रवाई की और पेपर लीक के 13 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया और अब ये सब जेल के अंदर हैं। मोहतरमा स्वराज ने कहा कि मुलजिमों को जल्द से जल्द सख्त सजा दी जाएगी। एहतजाज के बारे में बात करते हुए बीजेपी की एमपी ने कहा कि हुकूमत ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया है, पुरमन एहतजाज की इजाज़त दी और बातचीत के दरवाजे खुले रखे। बीजेपी ने कल वजीर आजम की रिहायशगाह के दरवाजे के बाहर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के किसी इजाजत के बगैर धरना देने की मजम्मत की है और इसे गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। नई दिल्ली में नामानिकारों से गुफ्तगू करते हुए बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत की जमहूरियत की तारीख में ये एक शर्मनाक दिन था। उन्होंने कहा कि वजीर आजम की रिहायशगाह की अजमत और वक़ार को जानते हुए जनाब गांधी ने गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल का मुजाहिरा किया। भारतीय बहरिया ने आज कर्नाटक में कारवार के मकाम पर आईएनएस मालवन को अपने कामकाज में शामिल किया। ये माहे तर्ज का दूसरा आबदोज शिकन जंगी जहाज है। मुल्क में ही जंगी जहाज तैयार करने की भारत की सलाहियतों के सिलसिले में ये एक अहम कामयाबी है। फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल एपी सिंह इस तकरीब में मेहमान खसूसी थे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के सिलसिले में बहरिया की कोशिशों की सताइश की। उन्होंने कहा कि आईएनएस मालवन मुल्क के साहिली खित्ते की बहरी सलामती में एक अहम किरदार अदा करेगा।
2: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैड कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स, सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: वजीर खारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मनीला में कोर्ट वज़राए खारिजा की मीटिंग में शिरकत की है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका ने एक मुश्तरका बयान में भारत बहरुल काहिल को खुला और आज़ादाना रखने के अपने अज़्म और इसे मुस्तहकम करने का तहिया किया है। इन मुल्कों ने आसियान तंजीम के इत्तेहाद और उसकी मरकजी हैसियत की भी पुरजोर हिमायत की है। मीटिंग के दौरान इन मुल्कों ने आसियान के पस मंज़र की हिमायत में इलाकाई चैलेंजों और मौक़ों पर भी तवज्जो मरकूज़ की। मीटिंग में इक्तिसादी खुशहाली, अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजी और इमरजेंसी के हालात से निमटने के तौर तरीकों पर खास तौर पर तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं ने बहरी सिक्योरिटी पर भी गौर व खौज किया। इस मौके पर डॉक्टर जयशंकर ने अमरीका के वजीर खारिजा मार्को रूबियो से भी गुफ्तगू की। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस मीटिंग के दौरान ऐसे शोबों पर तवज्जो मरकूज की गई जो भारत अमरीका जामे आलमी कलीदे शराकतदारी के लिए तरजीही शोबे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर खारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने फिलिपाइन के शहर मनीला में मशरिकी एशिया चोटी मीटिंग और आसियान इलाकाई फोरम के इजलास के दौरान चीन के वजीर खारिजा वांग यी से बातचीत की है। अपने इफ्तिताहिया कलिमात में डॉक्टर जयशंकर ने भारत और चीन के दरमियान ताल्लुकात को बतदरीज मामूल पर लाने की ज़रूरत को उजागर किया और साथ ही ये भी कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बाहमी तआवुन और इश्तराक के लिए सरहदों पर अमन सुकून का होना एक बुनियादी शर्त है। वजीर खारिजा ने मजीद कहा कि दोनों मुल्कों को यकीन है कि बाहमी एतमाद और बाहमी

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि बहस जितनी भी लंबी चले उतनी लंबी होनी चाहिए और यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस तरह की बाधाएं खड़ी की जिससे प्रतीत होता है कि वे संवाद में शामिल नहीं होना चाहते।
1: देखिए, जो ओपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते, लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किया सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।

0: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है।
1: संवैधानिक पद पे रह के संविधान की गरिमा को तार तार किया, उनका ये आचरण बहुत ही खतरनाक मंशा से वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते हैं।
0: भाजपा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विद्यार्थियों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने युवा नेतृत्व वाले विकास के मंत्र को विकसित भारत को मजबूत करने की नींव बनाया है।
2: आप सब जानते हैं कि नीट जैसा एग्जाम जिसमें 20 से 22 लाख कैंडिडेट्स अपियर होते हैं उसकी तैयारी में 6 महीने लगते हैं, लेकिन मात्र 37 डेज में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया और रिजल्ट भी मात्र 25 दिन में आप सभी के सामने ला खड़ा कर दिया गया। जो री एग्जामिनेशन हुई उसमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करा गया ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का लूप होल हो उसको कर्ब किया जाए, उसको प्लग इन किया जाए।
0: सुश्री स्वराज ने बताया कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पेपर लीक के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब वे सभी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। इससे पहले जब लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू करने के लिए एकत्रित हुई तो अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के समय को लेकर सभी को एकमत होना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर श्री बिरला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष ने नीट मामले पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये सदस्यों का अधिकार है।
3: आजादी के 50 साल बाद सदन ने यह संकल्प लिया था कि किसी भी हालत में क्वेश्चन आवर और जीरो आवर चलाएंगे। ये मेंबर्स के आवर है। आपके प्रश्नों को के उत्तर तैयार करने में कितना श्रम जाता है और जनता का धन जाता है, आप इसकी कल्पना करिए। आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, प्लीज अपनी सीट पर बैठिए और क्वेश्चन आवर चलने दीजिए।
0: बार बार अपील करने के बावजूद विपक्षी सदस्यों ने उपसभापति की सलाह पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सदन को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार आईएनएस कदम्बा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। आईएनएस मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
4: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स, सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आईएएसवी त्रिवेणी पर सवार होकर पहली बार सभी सेनाओं की महिला सदस्य समुद्री अभियान समुद्र प्रदक्षिणा ने न केवल पृथ्वी का चक्कर लगाया बल्कि इस असाधारण उपलब्धि से करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित भी किया। उन्होंने आईएएसवी त्रिवेणी को आत्मनिर्भर भारत और भारत के नवाचार क्षमताओं और आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण बताया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की।
5: In this era of volatility and disruption,
6: उथल पुथल के इस दौर में आपूर्ति श्रृंखला पर सबसे अधिक दबाव दिख रहा है। ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है। वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही भारत और आसियान दोनों ही अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं, इसलिए चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें मौकों पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए।
0: बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि बैठक में भारतीय अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान को हुरमुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण की अनुमति देना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए एक बेहद खतरनाक कदम होगा। डॉ. जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान फिलीपींस, रूस और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल एक्स @ एआईआर न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2-3 दिनों तक तेज बारिश होगी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। 16 जिलों में पानी भरा हुआ है। राज्य में बाढ़ में 21 और

0: लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 31 हो गई है।
1: आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में 872 गांव अभी भी जलमग्न हैं और 5,64,000 से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 24,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। कामरूप और कामरूप महानगर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जहां 4,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार ने 71 राहत शिविर और 202 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। इन शिविरों में 12,000 से अधिक लोगों को आश्रय दिया गया है, जबकि 1,00,000 से अधिक प्रभावित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। NDRF, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य में लगातार जुटी हुई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 753 अंक गिरकर 76,717 पर और निफ्टी 202 अंक की गिरावट के साथ 23,986 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्रों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। दोस्तों, हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम इतिहास में कुछ आवाजें ऐसी हैं जो समय के साथ पुरानी नहीं होती बल्कि और भी अधिक दिल के करीब आ जाती है। ऐसी ही एक आवाज है मुकेश साहब की। जब मुकेश गाते थे ना तो ऐसा लगता था जैसे कोई अपने दिल की बात कह रहा हो। उनकी गायकी में कोई बनावट नहीं थी बल्कि सच्चाई थी, यही उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म है तीसरी मंजिल, तीसरी कसम।

0: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, जो आज केंद्रित है मुकेश साहब पर, और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। बाकी के नगमे इस अंतराल के बाद।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में जन्मे मुकेश चंद्र माथुर बचपन से ही संगीत के शौकीन थे। उनके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब प्रसिद्ध अभिनेता मोतीलाल ने एक पारिवारिक समारोह में उन्हें गाते सुना। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर वे मुकेश को मुंबई ले आए और यहीं से शुरू हुआ भारतीय फिल्म संगीत का एक सुनहरा अध्याय।

दोस्तों, मुकेश ने लगभग 1300 से अधिक फिल्मी गीत गाए। उन्होंने केवल राज कपूर के लिए ही नहीं बल्कि मनोज कुमार, सुनील दत्त, फिरोज खान, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और कई अन्य कलाकारों के लिए भी अपनी आवाज़ दी। तो आइए अब सुनते हैं श्री 420 का ये गीत।

दोस्तों, इन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया था। इन्हें 1974 में फिल्म रजनीगंधा के गाने कई बार यूं ही देखा है के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। 1960 में फिल्म अनाड़ी के गीत सब कुछ सीखा हमने के लिए, 1971 में फिल्म पहचान के गीत सबसे बड़ा नादान वही है के लिए, और 1973 में फिल्म बेईमान के गाने जय बोलो बेईमान के लिए इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया था। 1970 की फिल्म कभी कभी के लिए इन्हें, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है के लिए इन्हें मरणोपरांत फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया था।

दोस्तों 27 अगस्त 1976 को अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में एक स्टेज शो के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ा और संगीत की ये अमर आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। उनके निधन की खबर सुनकर राज कपूर की आंखें भर आई और उन्होंने भावुक होकर कहा था, मैंने अपनी आवाज़ खो दी। लेकिन कलाकार कभी विदा नहीं होते, वे अपनी कला में हमेशा जीवित रहते हैं।

दोस्तों बहुत से श्रोता मेल के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनके भी नाम पढ़ लेते हैं। बठिंडा खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। विरमगाम गुजरात से प्रमीला भवसार, भवेश कुमार भवसार। अगला मैसेज आया है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना और केशु रिधान खुराना का। अगला मैसेज आया है चिरमीरा कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंद्री लहरे। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, इन्होंने हमें मैसेज किया है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमत कौर मनु, इन्होंने भी हमें मैसेज किया है। अगला मैसेज आया है अमर रमेश कुमार खत्री, टेलर मास्टर कृष्ण लाल खत्री, मोहम्मद अमीन, जफर सादिक शेख, शंकर गुल शर्मा और इन्होंने हमें मैसेज किया है, ये दिख नहीं रहा है कहाँ से मैसेज इन्होंने किया है हमें। नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूनाराम देवांगन और कृष्णा देवांगन ने भी हमें मैसेज किया है पलारी छत्तीसगढ़ से। अगला मैसेज आया है मोहम्मद यासिन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज और बेबी चाहत का। नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखन लाल देवांगन और सावित्री बाई देवांगन ने हमें मैसेज किया है पहादा पलारी छत्तीसगढ़ से। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या खुराना, आरव खुराना, मेघा, आशीष, अनुज, छोटू और एसके पप्पी।

इस गीत के साथ ही एक ही कलाकार कार्यक्रम का समय संपन्न होता है। मीना चौहान को आज्ञा दीजिए, नमस्कार। लेकिन दोस्तों जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि ठीक 3 बजे शुरू हो रहा है हमारा कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज, जिसमें हम आपको सुनाते हैं गोल्डन एरास के गीत। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज। मैटिनी मेलोडीज कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान और रहूंगी इस कार्यक्रम में आपके साथ। तो चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म 2 बदन के इस गीत के साथ, जिसे गाया है आशा भोसले ने।

दोस्तों, 60 और 70 का दशक भारतीय सिनेमा का स्वर्णिम युग माना जाता है। यही वो समय था जब शैलेंद्र, साहिर लुधियानवी, मसरू सुल्तानपुरी, आनंद बख्शी और गुलजार जैसे गीतकार शब्दों में जादू भर रहे थे। सचिन देव बर्मन, राहुल देव बर्मन, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी और नौशाद जैसे संगीतकार सुरों को अमर बना रहे थे। वहीं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश, किशोर कुमार, मन्ना डे और आशा भोसले जैसी महान आवाजें हर दिल की धड़कन बन चुकी थी। तो चलिए सुनते हैं फिल्म

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म नया दौर से, जो रिलीज हुई थी 1957 में। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक थे बी.आर. चोपड़ा। फिल्म में दिलीप कुमार, वैजयंतीमाला, अजीत और जीवन मुख्य भूमिकाओं में थे। ये फिल्म मशीनों के बढ़ते प्रभाव और इंसानी मेहनत के संघर्ष की कहानी पर आधारित थी और उस दौर की सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जाती है। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले को।

दोस्तों आइए अब सुनते हैं फिल्म अप्रैल फूल का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर ने, संगीतकार है शंकर जयकिशन और गीतकार हसरत जयपुरी। दोस्तों ये गीत 1960 के दशक के सबसे मधुर और लोकप्रिय रोमांटिक युगलों में से गिना जाता है। गीत का मुखड़ा कह दो जहां से कह दो प्रेम की उसी सच्चाई को व्यक्त करता है कि प्यार किसी के आदेश या रोक टोक से नहीं रुकता है। तो चलिए सुनते हैं ये मधुर गीत।

श्रोताओं, बहुत से दोस्त हमारे साथ मेल पर जुड़ चुके हैं। आइए इन्हें देख लेते हैं कि कौन कौन से श्रोता मेल ने हमें मेल भेजी है। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, इन्होंने हमें मेल किया है शांति नगर सोनीपत से। और अगला जो मेल आया है वो है एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। और अगला जो मेल आया है वो भी इन्हीं का आया है। और इससे अगला जो मेल हमें भेजा है वो मोहम्मद कमर ने हमें भेजा है, और आदिल कमर गुन्नौर से भी इन्होंने हमें मैसेज किया है। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा और पूजा परिहार, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना और हर्षित ने हमें मेल किया है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। और अगला मैसेज जो हमें किया है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो ने। अगला मैसेज आया है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत गिल, राजदीप गिल, गुरनूर गिल, गुरलाल गिल सिंह और अविराज सिंह का। अगला मैसेज आया है जी, इन्होंने लिखा है कि एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज प्रसिद्ध गायक मुकेश जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनने को मिल रहा है। मुकेश, ये मैसेज हमने हमें भेजा है तरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा ने। और अगला जो मैसेज आया है वो फिर से रिपीटेड मैसेज है, और ये मैसेज हमें फिर से तुलसी मस्किन जी ने भेजा है। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। ये थे मेल हमारे श्रोताओं द्वारा भेजे गए। आइए अब सुन लेते हैं ये की।

अब सुनते हैं 1963 में आई फिल्म पारस मणि का ये गीत, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार थे असद भोपाली। दोस्तों, ये गीत हिंदी सिनेमा के सबसे दर्द भरे और मधुर युगल गीतों में गिना जाता है।

0: जब याद आए, बहुत याद आए।
1: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही मैटिनी मेलोडी से मुझे यानी मीना चौहान को दीजिए इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर प्रस्तुत है कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

जो 10 सफ़ात पर मुश्तमिल है। गुज़श्ता 80-85 साल से इस कहानी पर काफ़ी लिखा गया है, लिखा जा रहा है और लिखा जाता रहेगा। हर नस्ल के लिए कहानी चैलेंज बनकर उभरती है, सवाल कायम करती है और जहन को झुंझोड़ती है। कहानी बेशक लाफानी, बेमिसाल और मुमताज़ है, मगर क्यों है, इसे मजीद समझना बाकी है। कफन के सिलसिले में ये बात आसानी से कह दी जाती है कि यह हकीकत की बेरहम तस्वीर है। बात भी सच्ची है, इसलिए कि कारईन और नाकदीन का यही फैसला है। लेकिन कहानी में तरसील अल्फाज के साथ साथ बाफ्तो बुनत और इजमलाल की जो मजबूत साख्त है, नीज एहसास बेगानगी के जिम्न में अमल की जो अलग अलग मिसालें दी गई हैं, उन्हें समझना भी नहायत ज़रूरी है। वो इसलिए कि इन्हें में कहानी की अजमत के निशानात कायम हैं। लेकिन ठहरिए और सोचिए कि कहाँ प्रेमचंद की वाशिका हकीकत निगारी का खुला इजहार और कहाँ बेगानगी का एहसास और मलफूब बयान। बहरे कह पहले हम एहसास बेगानगी एलियनेशन के तस्वूर को समझें, फिर देखें कि प्रेमचंद के जरिए इस कहानी में एहसास बेगानगी की तस्वीर फलसफियाना असास और इमरानियाती नज़रियों से कम तो नहीं। एलियनेशन लातीनी लफ्ज़ एलियनस से बना है, बमानी मुतालिक बदिगर से मुश्तक। लगवी सतह पर इसके मतालिब बरगश्तगी, बेगानगी, अजनबियत, मुंतकली, मिल्कियत, रोगर्दानी, इन्हराफ और इलाहदगी वगैरह के लिए मुख्तस हैं। एलियनेशन या एहसास बेगानगी के बुनियाद गुजार हीगल हैं। हीगल ने अपनी किताब फेनोमोलॉजी ऑफ माइंड 1807 में इंसान और समाजी निज़ाम के ताल्लुक का जायजा लिया और पाया कि समाजी निज़ाम हाशिए पर जी रहे लोगों को एक ऐसी हालत में डाल देता है जिसमें माशरे की अखलाकी कदरों से उनका यकीन उठ जाता है। नतीजतन लाशऊरी तौर पर वह इंसानी समाज से अपना रिश्ता मुनक़ता कर लेता है। बींग एंड नथिंगनेस 1923 में सार्त्र ने यह बताया कि एहसास बेगानगी दरअसल नफ्सियाती उसतों की तहकीक है। दूसरे ये कि निज़ाम इंसानी शऊर और क़ुव्वत इरादी को इस हद तक कुचलने में कामयाब होता है जैसे वो साबित करना चाहता हो कि इंसान तारीख का बेजबान कारी होने के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। तीसरे ये कि मेहनत और जिस्म से इंसानी रिश्तों का वो ताना बाना बुना जाता है जिसमें न जिस्म न मेहनत और न फल अपना होता है। अदब में पेश किए हुए तसव्वुरात और फलसफे बेशतर सूरतों में दिलचस्प, बामानी और बरमहल होते हैं। तारीखी असनाद के बारे में एंगल्स के बिल्जाक मुतालिका हैजान जग जाहिर है। सार्त्रे के नावलों में एहसास बेगानगी की जो नफ्सियाती रोशनी है वो इन किताबों में कहाँ है। इन्हीं दिलचस्प सवालों के दरमियान ये सवाल कायम होता है कि कफन कहानी में ऐसा क्या है जो हर नस्ल के मुतालियात को चैलेंज मिलता है। लेकिन इसको समझने के लिए अहद प्रेमचंद के हिंदुस्तानी देहात को समझना होगा। उस वक्त के हिंदुस्तानी समाज और बिलखसूस देहात को समझने के बाद कहानी में इजहार को जानना जरूरी है। जमाने प्रेमचंद में दो तरह की गुलामी रायज थी। एक गुलामी तो ये थी कि सारा हिंदुस्तान अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम था। दूसरी गुलामी ये थी कि औरतें और दलित अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी के साथ साथ हिंदुस्तानी समाज में मौजूद इस्तेहसाली निज़ाम के भी गुलाम थे। प्रेमचंद ने दोनों तरह की गुलामी को अपनी तख्लीकात का मौजू बनाया। दलित मसाइल से मुतालिक प्रेमचंद की चंद एक कहानियां इस तरह हैं: सिर्फ एक आवाज, सवा सिर गेहूं, गरीब की आय, मंदिर, ठाकुर का कुआं, जुर्माना, दूध की कीमत वगैरह वगैरह। ये सच है कि अफसाना होने के बायस कफन का कैनवस छोटा है, मगर दानिशवराना इजहार के रंग तेज हैं जिसके दुरून में 70% हिंदुस्तान की जिंदगी सांस लेती है। फिक्री तस्वीरें मुलाहजा हों: गांव में काम की कमी न थी, काश्तकारों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। समाज में रात दिन काम करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की कमजोरियों का फायदा उठाना जानते थे कहीं ज्यादा फारुकुल भाल थे। अब कोई क्या खिलाएगा, अब तो सबको किफायत सूझती है। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे, मगर बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च किफायत सूझती है। चुड़ैल का फसाद होगा और क्या, यहाँ तो ओझा भी एक रुपया मांगता है। बाप बेटे रोते हुए गाँव के जमींदार के पास गए, उन दोनों की सूरतों से नफरत करते थे, कई मर्तबा उन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी की इल्लत में, वादा पर काम पर न आने की इल्लत में। पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है, अब तो तेरी सूरत ही नजर नहीं आती।
अब मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहते।

0: जमींदार साहब रामदिल आदमी थे। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार की जरूरत क्यों कर होती। गांव की रकीकुल कल औरतें आकर लाश देखती थीं और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिरा के चली जाती थीं। मिस्कीन इतने के वसूली की मुतलक उम्मीद न होने पर भी लोग उन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे, दुनिया के मकरों से आज़ाद कर्ज से लदे हुए। मस्कूरा इक्तबासात प्रेमचंद के मुफक्किराना इजहार की झलक पेश करते हैं। इस माने में कफन प्रेमचंद के दौर के किसी हिंदुस्तानी देहात की कहानी मानी जा सकती है, मगर वो जिंदगी की हकीकतों का ही अक्स है। इस अक्स में इस्तेहसाल के मुख्तलिफ ताने बाने नजर आते हैं। कहानी की साख्त में माहौल निज़ाम का अंदाज़ा इन इबारात से जाहिर होता है। एहसास बेगानगी के सियाक व सबाक की शक्ल में पहला इक्तबास इशारा करता है कि गांव के हाशिए पर छूत छात की वजह से उन्हें अलग कुंबे में रहने पर मजबूर कर दिया गया है। दूसरा इक्तबास गांव के माशी निज़ाम को पेश करता है। तीसरे इक्तबास में निज़ाम का पिरामिड सामने आता है। किसानों से अच्छी हालत उनकी थी जो किसानों की कमजोरियों का फायदा उठाना जानते थे। वो हालात के थपेड़े से बेहाल किसानों से कहीं ज्यादा कामयाब और आसुदा थे। चौथे इक्तबास में माशी तकलीफ से खौफजदा मुतगैर रुझान की तफसील है तो 10वें इक्तबास में कर्जदारी का बयान है। 5वें, 6ठे और 8वें इक्तबास में हिजमनी की तफसील है। 6ठा ओझा की ताकत का एहसास दिलाता है और 8वां काबिल तकलीद महाजनी हमदर्दी का है। 9वां इक्तबास इस निज़ाम में खवातीन की एम्पैथी का खफीफ इशारा है जो जाहिर करता है कि औरतें एक दूसरे के दर्द व गम से कैसे जुड़ती हैं। थोड़े वक्त के लिए सही बुधिया की लाश पर आंसू बहाने वाली सिर्फ औरतें ही थीं। जिन 2 मर्दों के लिए उसने जान दी, अनथक मेहनत की, वो तो उसके मरने के बाद दूसरी दुनिया में थे। इस तरह हम देखते हैं कि हल्के हल्के बरसात से कफन में हिंदुस्तान देहात आम आवाम निज़ाम के साथ कहानी के समाजी मंजर और पस मंजर को पेंट किया गया है। देखना यह है कि किस तरह ये पस मंजर एहसास बेगानगी के एहसास को उभारता है। जद्दोजहद और हिजरत एहसास बेगानगी की अलग अलग दाखिली और हर कदम पर किस्मत की नफी करते हुए बातनी कैफियात हैं, मगर एहसास कमाईगी की मनफी सोच घेसु माधो और बुधिया को जोड़ती है और गैर वाजिद होकर भी मजबूती से कारीन पर चोट करती है। दोनों बेगैरतों का दोजक भरने वाली, शौहर के खानदान में रिश्तों के निज़ाम की बुनियाद डालने वाली और किसी को अपना दुख न सुनाने वाली मेहनत कश बुधिया का खावंद उसके आखिरी वक्त में जिन दाखिली कैफियात से गुजरता है वो जग जाहिर है। वही औरत आज जज़्गी की तकलीफ से मर रही थी और ये दोनों शायद इस इंतजार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोए। हुआ भी यही, आलू खाकर पानी पीने के बाद वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे थे, जैसे 2 बड़े अजदह कुंडलियां मारे पड़े हों और बुधिया अभी तक कराह रही थी। कफन अफसाने में बुधिया के शौहर माधव के बर्ताव और दिली तासुरात को समझना सबसे जरूरी है। अफसाने में उसके दिली तासुरात को बारीकी से पेश किया गया है। दिली तासुरात की तशरीह बाप बेटे के मकालमे से होती है। दोनों निकम्मे मतलबी और नाकारा है। बुधिया से दोनों को कोई लगाव नहीं है, जिसका इजहार अफसाने के मकालमे से होता है। इक्तबास मुलाहजा कीजिए। घेसु ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन तड़पते हो गया, जा देख तो आ, माधव दर्दनाक लहजे में बोला। मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या आऊं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ जिंदगी का सुख भोगा उसी के साथ इतनी बेवफाई, मुझसे उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। माधव को अंदेशा था कि वो कोठरी में गया तो घेसु आलुओं का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां डर लगता है। डर किस बात का, मैं तो यहां हूं ही ना, तो तुम ही जाकर देखो ना, अनकोट। प्रेमचंद ने यहां मुफाद पर जिंदगी की बेरहमी के जिम्न उस भूख की तस्वीर कशी की है जिसकी तड़प में इंसान मुफाद की बेरहम सतह पर पहुंच जाता है। ये वो सतह है जहां पहुंचकर खून के रिश्ते भी झुलस जाते हैं। कफन के सिलसिले में ये कहना जरूरी है कि घेसु और माधव जिन हालात की वजह से दर्जे जह में मुबतला बुधिया को नजरअंदाज करके आलू खाने में मगन है, उसमें किसी भी जात बिरादरी का आदमी होता तो वही करता जो उन दोनों ने किया। आखिर में यह कि प्रेमचंद के दलित किरदारों में मर्दों के मुकाबले में औरतें ज्यादा बाहिम्मत और जुर्रतमंद नजर आती हैं। गंगी, मुलिया, सुखिया, दुमकी और कफन की बुधिया इसकी उम्दा मिसालें हैं।
1: समीन, अभी आप जनाब इरशाद न्याजी

0: सामीन, अभी आप जगजीत सिंह की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। कलाम था मेराज का। सामीन, इंसानी ज़िंदगी हमेशा हरकत में रहती है, मुसलसल बदलती रहती है। शायरी भी इन्हीं तब्दीलियों की खूबसूरत तर्जुमान है। हर दौर का शायर अपने ज़माने के हालात और इंसान के जज्बात को अपनी शायरी में समो देता है। इसीलिए शायरी हमेशा ज़िंदा रहती है और हर अहद में दिलों को मुतासिर करती है। तो आइए सामेईन, प्रोग्राम नवाए शायर के तहत जनाब शिव कुमार बिलग्रामी से उनका कलाम सुनते हैं।
1: मैं एक अपनी गजल पेश करता हूँ। हमारे पांव डरते हैं तुम्हारे साथ चलने में, हमारे पांव डरते हैं तुम्हारे साथ चलने में, जरा सा वक्त लगता है कभी नीयत बदलने में, ज़रा सा वक्त लगता है कभी नीयत बदलने में। तुम्हें शायद पता हो या न हो शायद पता तुमको, तुम्हें शायद पता हो या न हो शायद पता तुमको, कि सालों साल लगते हैं चुभा कांटा निकलने में, कि सालों साल लगते हैं चुभा कांटा निकलने में। किसी पत्थर की मूरत से न करना प्यार तुम हरगिज, किसी पत्थर की मूरत से न करना प्यार तुम हरगिज, हजारों साल लगते हैं बुतों का दिल पिघलने में, हजारों साल लगते हैं बुतों का दिल पिघलने में। जरा सा वक्त तो दे जिंदगी मुझको संभलने का, जरा सा वक्त तो दे जिंदगी मुझको संभलने का, बुरा हो वक्त तो कुछ वक्त लगता है संभलने में, बुरा हो वक्त तो कुछ वक्त लगता है संभलने में। न जाने क्यों बुझी आँखों में जुगनू से चमकते हैं, न जाने क्यों बुझी आँखों में जुगनू से चमकते हैं, अभी तो वक्त बाकी है अंधेरी रात ढलने में, अभी तो वक्त बाकी है अंधेरी रात ढलने में। हजारों साल लगते हैं बुतों का दिल पिघलने में, हमारे पांव डरते हैं तुम्हारे साथ चलने में। एक और गजल पेश कर रहा हूं। बात जो दिल में है तुमको वो बताएं कैसे, बात जो दिल में है तुमको वो बताएं कैसे, दिल की सरहद से जबां तक उसे लाएं कैसे, दिल की सरहद से जबां तक उसे लाएं कैसे, बात जो दिल में है तुमको वो बताएं।

कैसे एक तस्वीर जो इस दिल में छुपा रखी है, एक तस्वीर जो इस दिल में छुपा रखी है, चीर कर दिल को वो तस्वीर दिखाएं कैसे, बात जो दिल में है तुमको वो बताएं कैसे। बड़ी हसरत से इन आँखों ने तेरे ख्वाब भरे, बड़ी हसरत से इन आँखों ने तेरे ख्वाब भरे, हम इन आँखों से तेरे ख्वाब हटाएं कैसे। बात जो दिल में है तुमको वो बताएं कैसे। सभी नफरत के तरफदार हैं महफिल में तेरी, सभी नफरत के तरफदार हैं महफिल में तेरी, हम मोहब्बत की कोई बात उठाएं कैसे। बात जो दिल में है तुमको वो बताएं कैसे। एक बेनाम सा रिश्ता है अभी तक तुमसे, एक बेनाम सा रिश्ता है अभी तक तुमसे, इस हकीकत को छुपाएं तो छुपाएं कैसे। बात जो दिल में है तुमको वो बताएं कैसे। दिल की सरहद से जबां तक उसे लाएं कैसे, बात जो दिल में है तुमको वो बताएं कैसे। एक और गजल पेश कर रहा हूँ। एक महफिल सजाए बैठा हूँ, एक महफिल सजाए बैठा हूँ, तुझसे दिल को लगाए बैठा हूँ, तुझसे दिल को लगाए बैठा हूँ, एक महफिल सजाए बैठा हूँ, तुझसे मिलने की बेकरारी है, तुझसे मिलने की बेकरारी है, बेकरारी दबाए बैठा हूँ, बेकरारी दबाए बैठा हूँ, एक महफिल सजाए बैठा हूँ, तेरे दीदार की तमन्ना में, तेरे दीदार की तमन्ना में, चंद सांसें बचाए बैठा हूँ, एक महफिल सजाए बैठा हूँ, तुझसे दिल को लगाए बैठा हूँ। मुझ में मेरा न कुछ रहा बाकी, मुझ में मेरा न कुछ रहा बाकी, अपनी हस्ती मिटाए बैठा हूँ, एक महफिल सजाए बैठा हूँ, तुझसे दिल को लगाए बैठा हूँ। आ भी जाओ अगर मगर छोड़ो, आ भी जाओ अगर मगर छोड़ो, कब से पलकें बिछाए बैठा हूँ, एक महफिल सजाए बैठा हूँ, तुझसे दिल को लगाए बैठा हूँ। एक गजल और पेश कर रहा हूँ। मुश्किलों के दौर को हम खुद पे ऐसे सह गए, मुश्किलों के दौर को हम खुद पे ऐसे सह गए, कुछ तो आंसू पी लिए कुछ एक आंसू बह गए, कुछ तो आंसू पी लिए कुछ एक आंसू बह गए, मुश्किलों के दौर को हम खुद पे ऐसे सह गए। उम्र भर आंखों में पाला था जिन्हें अपना समझ, उम्र भर आंखों में पाला था जिन्हें अपना समझ, ख्वाब वो ऐसे गए हम देखते ही रह गए, ख्वाब वो ऐसे गए हम देखते ही रह गए, मुश्किलों के दौर को हम खुद पे ऐसे सह गए, कुछ तो आंसू पी लिए कुछ एक आंसू बह गए। रफ्ता रफ्ता रात दिन हमको मिटाया वक्त ने, रफ्ता रफ्ता रात दिन हमको मिटाया वक्त ने, रेत का हम घर न थे जो एक पल में ढह गए, रेत का हम घर न थे जो एक पल में ढह गए, मुश्किलों के दौर को हम खुद पे ऐसे सह गए, कुछ तो आंसू पी लिए कुछ एक आंसू बह गए। आप उनके दर्द को हरगिज न कमतर आंकिए,
आप उनके दर्द को हरगिज

0: न कमतर आंकिए, वक्त की यह दास्तां जो मुस्कुरा कर कह गए, वक्त की यह दास्तां जो मुस्कुरा कर कह गए, मुश्किलों के दौर को हम खुद पे ऐसे सह गए। क्या बताऊं मैं तुम्हें अब जख्म कैसे हैं मेरे, क्या बताऊं मैं तुम्हें अब जख्म कैसे हैं मेरे, भर गए हैं जख्म लेकिन दाग फिर भी रह गए, भर गए हैं जख्म लेकिन दाग फिर भी रह गए, मुश्किलों के दौर को हम खुद पे ऐसे सह गए, कुछ तो आंसू पी लिए कुछ एक आंसू बह गए।
1: सामेन, अभी आप प्रोग्राम नवाए शायर के तहत जनाब शिव कुमार बिलग्रामी से उनका कलाम सुन रहे थे। तो सामेन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम अक्स अदब। इसी के साथ आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। अपनी मेज़बान नसरीन बेगम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: जी हाँ, घड़ी की सुइयों ने इशारा कर दिया है कि शाम के 5:30 हो चले हैं और समय हो चला है आपके पसंदीदा कार्यक्रम खेल खिलाड़ी का। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त अतुल और मेरे साथ
1: है अनु गुप्ता। सभी को नमस्कार।
0: जी हाँ नमस्कार श्रोताओं। और आज

0: खेल प्रेमियों की। और इसके अलावा ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप जो चाइना में चल रहा है उस पर जानकारी देंगे अपने श्रोताओं को।
1: साथ ही हम बात करेंगे चाइना ओपन बैडमिंटन की चैंपियनशिप जो चल रही है, और हम लेकर जाएंगे औरंगाबाद अपने श्रोताओं को पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप से रूबरू कराने के लिए।
0: जी हाँ, पावर लिफ्टिंग की बात आपने की तो वहां से तो खबरें हम बताएंगे अपने श्रोताओं को। इसके अलावा चेस, जी हाँ, चेन्नई ग्रैंड मास्टर जो 2026 टूर्नामेंट जो चल रहा है वहां से क्या खबरें हैं, राउंड 6 के रिजल्ट और राउंड 7 में क्या कुछ

0: पे एक विस्तृत रिपोर्ट अपने श्रोताओं को सुनवा देते हैं।
1: द कॉमनवेल्थ गेम्स।
2: अब से सिर्फ एक दिन बाद स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का आगाज होगा। इस बार का संस्करण कई मायनों में अलग है। खेलों का दायरा पहले की तुलना में छोटा रखा गया है और कार्यक्रम में केवल 10 खेल शामिल किए गए हैं। भारत के लिए सबसे बड़ा बदलाव यह है कि बैडमिंटन, कुश्ती, हॉकी, टेबल

0: मुझे ये चुनौती आसान नहीं होगी। 3x3 बास्केटबॉल में भारतीय टीम के सामने कड़ी परीक्षा होगी। तेज गति वाले इस प्रारूप में किसी भी दिन कोई भी टीम बाजी पलट सकती है। भारत को यहां सफलता के लिए सामूहिक खेल और बेहतर रणनीति की जरूरत होगी। पदक की राह कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं।
1: लॉन बॉल्स में भारत के पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में इतिहास रचा था। इस बार भी अनुभवी खिलाड़ी उस सफलता को दोहराने की कोशिश करेंगे। यदि वे संयम और लय बनाए रखते हैं तो एक और यादगार प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। इस बार पैरा खेल भी विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे। रिकॉर्ड संख्या में पैरा स्पर्धाएं शामिल की

0: शुभकामनाओं के साथ हमारी खेल खिलाड़ी की पूरी टीम की ओर से भारतीय दल को शुभकामनाएं अनु। और कार्यक्रम में आगे बढ़े तो ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप की आपने बात की थी, तो आइए अपने श्रोताओं को वहां से क्या है वो रिपोर्ट सुनवा देते हैं।
1: चाइना में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल शॉटगन में भारत ने 50 सदस्यीय शूटर्स के दल को उतारा है। आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आइए जानते हैं भारतीय शूटर्स का पहले दिन कैसा रहा प्रदर्शन। 10 मीटर एयर राइफल पुरुष की बात करें तो भारत के पार्थ राकेश माने ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन वो फाइनल में 7वें नंबर पर रहे। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम की बात करें तो भारत की दोनों ही मिश्रित जोड़ी जिसमें सुरुचि सिंह और केदारलिंग बालाकृष्णा और दूसरी जोड़ी संयम और कमलजीत

बराबरी पर ला दिया। निर्णायक गेम में आयुष ने बेहतरीन संयम और आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए 21-17 से जीत दर्ज की और भारत को पुरुष एकल में पहली सफलता दिलाई। दूसरी ओर भारत के लक्ष्य सेन का मुकाबला भी जापान के युशी तनाका से आज शाम खेला जाएगा भारतीय समयानुसार 6:10 पर। इस मैच पर भी भारतीय प्रशंसकों की खासी नजर रहेगी। बात करें महिला एकल की तो वहां से भी आज एक अहम मुकाबला खेला गया।

नहीं, बहुत बढ़िया रहा है। और अभी के जनरेशन के जो बच्चे लोग को देख के सीखना चाहिए, क्योंकि इतने मास्टर्स लोग जो इतना पाउंडेज कर रहे हैं, क्योंकि अपने जो नया पीढ़ी है उनको इससे सबक सीखना चाहिए, क्योंकि अपना हेल्थ के हिसाब से तो बहुत कुछ अच्छा है। आप लोग को जो भी गेम खेलेंगे वो अपना दिल जान लगा के खेल के अपने टारगेट रखना, कि कोई खेलना है कि आधा यहाँ से।

0: देखा है कि भी वो 10-15-20 बार छींटे डाल देते हैं, 2-3 बार से ज्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई खुजली है, कोई पानी आता है, तो एलर्जी की दवाई होती है, वो भी खुद ना डालें, दिखा के ही डालें।
1: डॉक्टर साहब, अंत में आप हमारे जो श्रोतागण हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, बरसात में उन्हें आंखों से संबंधित कोई दिक्कत ना हो, अगर दिक्कत होती है तो क्या करें?
0: भी आंखें में दिक्कत ना हो तो सफाई मेंटेन करें। लोगों की आदत है कि गंदे हाथ से अपनी आंख में हाथ लगा देते हैं, खुजली कर लेते हैं। दिक्कत होती है, छोटी मोटी दिक्कत है तो कोई दिक्कत की बात, अगर प्रॉब्लम ज्यादा लगता है उसमें लापरवाही ना करें, क्योंकि कंजंक्टिवाइटिस वैसे जो होता है 4-5 दिन 7 दिन में सेटल हो जाता है, ठीक हो जाता है, पर कभी कभी ये परेशान करता है। और कभी कभी ये कि कुछ 15-20 दिन के बाद रोशनी में भी कमी हो सकती है। एक और प्रॉब्लम होती है जिसको हम कैरेटाइटिस कहते हैं, वो भी हो सकती है। तो ये सावधानी रखें।

0: तरीके से मानसून के मौसम में अपनी आंखों की देखभाल कर सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। और निश्चित ही आप द्वारा दी गई जानकारी का हमारे श्रोतागण फायदा उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अतुल भाई
2: जी, लोकेंद्र भाई,
1: अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे ये जानकारी। जानकारी का विषय था मानसून में आंखों के संक्रमण से बचाव। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर हरीश गांधी, नेत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल नई दिल्ली से, और इनसे बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल।
2: बहुत ही अच्छी जानकारी लोकेंद्र भाई अभी हमारे सभी बहन भाइयों ने ली है कि मानसून के सत्र में किस प्रकार से हम अपनी आंखों की देखभाल कर सकते हैं और उनका बचाव भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल
2: और भाई अपने भाइयों का मनोरंजन करवाते हैं और सुनवाते हैं योगेश कुमार उनके साथी की आवाज़ में हरिश्चंद्र तारावती किसी की ये रागनी।

0: और इसका जो उद्देश्य है पानी का अधिकतम संग्रह और भूजल का मतलब इकट्ठा करना है। इसकी शुरुआत की गई थी 22 मार्च 2021 में विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में। और इसका जो मतलब है, जहाँ बारिश हो वहीं और उसी समय वर्षा जल का संरक्षण करें।
1: बिल्कुल। और देखिए, अभियान के मुख्य जो उद्देश्य हैं लोकेंद्र भाई, वही है कि जो वर्षा का जल है उसका संचयन को बढ़ावा देना, भूजल स्तर में सुधार करना और पारंपरिक जल स्रोतों जैसे तालाब हुए, कुएं, बावड़ी आदि का संरक्षण और पुनर्जीवन जो करना। और यही है कि देखिए, भूजल स्तर में सुधार होगा तो देखिए लोगों की भागीदारी से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना है, जल संकट वाले क्षेत्रों में जल उपलब्धता को भी बढ़ाना है।
0: बिल्कुल, ये तो रही योजना के बारे में। अब अपने भाइयों का सुनवाते हैं एक और रागनी।
1: सत्येंद्र यादव की आवाज़।

0: लोकेंद्र भाई, अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे सत्येंद्र यादव की आवाज़ में ये रागनी, और इसी रागनी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुत करता है तुषार पारासर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोतो, आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी।

0: मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही तीसरी बार स्थगन के बाद दोपहर में फिर शुरू हुई तो भी विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
2: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वो बदलाव की मांग कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 11 सितम्बर को होगी। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकारी नीतियों का उद्देश्य बच्चों सहित सभी उपयोगकर्ताओं के लिए मुक्त, सुरक्षित, विश्वसनीय और उत्तरदायी इंटरनेट प्रदान करना है। लोकसभा में श्री वैष्णव ने कहा कि 2023 में लागू डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के उपयोग को विनियमित करने के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे किसान बहन भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम
0: अतुल भाई,
1: जी लोकेंद्र भाई।
0: कार्यक्रम लेके हाजिर हैं और आज के हम का हमारे कार्यक्रम में जानकारी भी होगी और साथ साथ होगा मनोरंजन।
1: बिल्कुल, और देखिए भाई, बरसात का मौसम चल रहा है लोकेंद्र भाई, और बरसात के मौसम में भाई हम तो अपने किसान भाइयों से यही कहेंगे कि भाई अपने पशुओं की जो देखभाल है भाई वो जरूर करें, क्योंकि देखिए बरसात के मौसम में ही कई बार पशुओं को अनेक बीमारियां जो है वो लग जाती हैं।
0: बिल्कुल, देखिए इसमें महत्वपूर्ण हम अपने भाइयों को बता दें कि सावधानियां भी रखें, पशुओं को साफ सुथरे और हवादार स्थान में रखें, पशुशाला जो होती है पानी उसमें जमा ना होने दें और उसकी नियमित रूप से साफ सफाई रखें। इसके साथ साथ अतुल भाई, पीने के लिए हमेशा स्वच्छ होता है या पानी उपलब्ध कराएं, हरा चारा साफ सुथरा होना चाहिए, फफूंदी ना लगा होना चाहिए और साथ ही गाढ़ा सलाना होना चाहिए, और संतुलित आहार का के साथ साथ नमक भी दें उनको, और मच्छर मक्खी जैसी बीमारियां वो कीड़े हैं उनको से बचाव करें।
1: यानी आप कह रहे हैं कि जो हमारे पशु हैं उनको मिनरल मिक्सचर भी आप दें,
0: हाँ
1: और भाई जब देखें कोशिश करें कि भाई आपके पशुओं पर जो है भाई मक्खी या मच्छर बैठ रहे हैं, तो उसका स्प्रे भी आप जो है अपने
0: बिल्कुल।
1: पशुओं पर करते रहें। और एक बात और कहना चाहेंगे भाई लोकेंद्र भाई,
0: हाँ
1: हम अपने सभी किसान भाइयों से कि भाई कोशिश करें, देखिए बरसात का मौसम है और आपने अगर आपकी पशुशाला पक्की है,
0: हाँ
1: अगर आपने अपने पशुओं के नीचे पक्का करा क्या हुआ है, तो भाई कोशिश करें कि भाई चूने का एक बार हफ्ते में छिड़काव आप अवश्य कर दें, और अगर कच्चा है तो भी करें,
0: तो भी
1: क्योंकि
0: करें।
1: आपने देखा होगा कि मिट्टी और जब गारा बनती है ना उसमें गोबर भी
0: हाँ
1: उस पशु का जब मिल जाता है
0: मैं
1: तो
0: हाँ
1: उसमें छोटे छोटे कीड़े
0: कीड़े आ
1: उत्पन्न
0: जाते
1: हो
0: हैं।
1: जाते
0: हाँ
1: हैं, और जब कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं तो वो पशुओं के खुर में या पशुओं के मुंह में भी कई बार
0: चले जाते हैं।
1: चले जाते हैं, और बीमारी का पशु जो है वो शिकार हो जाता है।
0: हाँ
1: तो कोशिश करें भाई आप चूने का भी जो है आप छिड़काव समय समय पर करते रहें, ताकि जो कीड़े हैं
0: वो उत्पन्न
1: या
0: ना हो।
1: हाँ वायरस है वो खत्म हो जाए।
0: बिल्कुल
1: और भाई जब बरसात का मौसम आप बता रहे हैं शुरू हुए, हम भी देख रहे हैं, हम भी भीगते हुए, आप भी भीगते हुए हैं
0: हाँ
1: बारिश में,
0: बिल्कुल।
1: तो भाई कोशिश करें कि भाई
0: उनको
1: अगर
0: बचाव रखें।
1: आपको पशुओं में कहीं खुरपका या मुंहपका कोई लक्षण भी दिखाई देता है, क्योंकि इस मौसम में बहुत ज़्यादा
0: बहुत
1: बीमारी
0: होता
1: है
0: है।
1: फैलती है, तो कोशिश करें भाई अपने नज़दीकी चिकित्सालय में जा करके अपने पशु की टीकाकरण कराएं
0: देख
1: और चिकित्सक को जरूर दिखाएं,
0: बिल्कुल
1: और समय समय पर सलाह भी आप लेते रहें।
0: बिल्कुल। तो ये तो रही जानकारी, अब अपने भाइयों को हम जानकारी सुनवाते हैं कृषि समाचार दर्शन के अंतर्गत एक मोती उत्पादन किसानों के लिए। जो अनुभवी किसान थे उन्होंने
1: जी
0: संध्या गुप्ता से क्या अपने अनुभवों को साझा किया, तो आइए सुनते हैं मोती उत्पादन किसान उत्पादक किसान।
2: नमस्कार, कृषि समाचार दर्शन में मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ। कृषि समाचार दर्शन के आज के अंक में मोती उत्पादक किसान और प्रशिक्षक मोती की खेती के विषय में अपने अनुभव और विचार साझा कर रहे हैं।
3: नमस्कार, मैं कुलंजन दुबे मनवानी। मोती पालन करीबन मैंने 2002 से शुरू किया था। मैंने मुंबई में CIFE करके है, वहाँ किरण दुबे मैडम के अंडर में मैंने ये ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद जो हमने शुरुआत की, दिक्कतें बहुत आई। पहले तो सीप भी नहीं मिल रहे थे, सीप मिलते भी थे तो छोटे छोटे मिलते थे। जो था उसी में अपना जो रिसर्च है शुरू कर दिया, और पहली बार हमारा मुरबाड में मोती आया था, जिसके बाद जो हमारा कॉन्फिडेंस है बहुत आगे बढ़ा। और फिर जो हम बढ़ते चले गए जगह जगह, हर एक राज्य में भारत में, पहले महाराष्ट्र से शुरू किया, फिर बिहार, बेगूसराय, ऐसे करते करते बहुत सारे राज्य, हमने गुजरात भी कवर किया, कर्नाटक में भी हम गए थे। हर जगह हम जाते थे वहाँ पे, क्योंकि करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ किसी ने किया नहीं था, लोगों के लिए जानकारी ही नहीं थी कि मोती पालन होता है। जो हर गांव में नदी तालाब मिलता है, इसमें मोती पालन होता है, लोगों को जानकारी नहीं। तो हमें खुद भी करना पड़ता था कि इस क्षेत्र में कैसे आएगा मोती, सीप कौन सी मिल रही है, ये सब हमें रिसर्च के तौर

को जानकारी नहीं, तो हमें खुद भी करना पड़ता था कि इस क्षेत्र में कैसे आएगा मोती, सीप कौन सी मिल रही है, ये सब हमें रिसर्च के तौर पे हमने हल स्टेट में दो दो साल रह के वहाँ पे मोती उगाए। और खुशी की बात यह है कि जहाँ भी हम रुके, जहाँ भी हमने ट्राई किया, हर जगह मोती आए, तो वो ही हमारा लक्ष्य और आगे बढ़ाती थी। पहले तो फेलियर में थे, फिर जो सक्सेस हुआ तो वो सक्सेस ही छूता चला गया। जो पहले प्रोजेक्ट में जो केवल 10% मोती आए, उसने हमें हौसला दिया कि हम आगे कर सकते हैं। और फिर जो बढ़ते गए, हम कदम हमारे पीछे नहीं गए। और यही देख के भारत सरकार से भी हमें कई अवार्ड मिले इसके लिए कि हमने मोती पालन किया। एक लड़की होने के बावजूद जंगल में रुकना, पहली महिला मैं हूँ जो मोती पालन में किया है, तो उसके लिए मुझे पहले अवार्ड मिला था 2011 में महाराष्ट्र के सरकार के तरफ से ही। वहां पे साइंटिस्टों को बुलाया था, लेकिन उसमें मुझे एक अवार्ड मिला। और फिर जो हमें अवार्ड मिलते चले गए, हम लोग एग्जीबिशन भी करते थे, लोगों को जागरूक भी करते थे कि भाई मोती पालन होता है। और आज देखिएगा, सर ने कहा था 2016 में, आज हम 2026 में खड़े हैं। हमारा मोती बिकता भी है, लोग हमें जानते भी हैं, और हम मोती उगा भी रहे हैं। लोगों को फोन पे भी कंसल्टेंसी हम करते हैं बिना चार्ज के। किसी को कोई दिक्कत है पॉल फार्मिंग के इसमें, तो हम सबको गाइड करते कि इस तरीके से किया जा सकता है, इसमें जो नुकसान है वो आप लोग न झेल पाए। हमें 13 साल, हमारा मोती नहीं आया था 13 साल, हमने लोगों को 13 साल नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बता दे रहे कि ये चीज आप न करें, जिससे उनको वो दिक्कतें नहीं आती जो हमने झेला। करते हैं पॉल फार्मिंग तो उनको मोती सही तरीके से मिल जाती है। कॉलेज के एग्रीकल्चर BSc बच्चों को हम पढ़ाते भी हैं, हमने स्किल कॉलेज में भी जाके ट्रेनिंग दिया है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में भी दिया है, NGOs में भी दिया है। जहाँ जहाँ हमें मौका मिला ये अवेयरनेस फैलाने का हमने किया। इसमें हमने इनोवेशंस भी किए। मशीन, इसको खोलने वाला जो यंत्र था, ये अपने इंडिया का नहीं था, फॉरेन के सीप को खोलने वाले, जो फॉरेन के सीप अगर आप देखेंगे तो हथेलियों से भी बड़े होते थे, उन सीप को खोलने के औजार से हम भारत की छोटी छोटी सीपियां जो 10-12 सेंटीमीटर की होती थी उसको खोलते थे। तो इसमें मौत की संख्या ज्यादा हो जाती थी, तो उससे बचाने के लिए हमने छोटे छोटे शेल के कवर के, जब ये मर जाते हैं तो उसी को हम एरलडाइट में मिक्स करके एक ओपनर बनाते हैं, जिससे छोटी से छोटी सीप भी हम खोल सकते हैं। और इस मशीन, ये सारे टूल्स भी बनाने के लिए हमें अवार्ड मिल चुका है। आज हमारे पास सब है, हम मोती पालन करते हैं, हमने टूल्स बनाए हैं, मोती के पेंडेंट्स कैसे बनाते हैं वो भी हमने सीख लिया, पर्ल्स को कैसे कट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पर्ल फार्मिंग में वैल्यू एडिशन हमने किया है। जो सीपियां मर जाती हैं उसके हैंडीक्राफ्ट हमने बनाए हैं, जैसे दिया है, कहते हैं कि दिया तले अंधेरा, लेकिन हमारा अगर सीप का दिया आप देखेंगे, अंधेरा नहीं होता उस दिए के नीचे। जो भी कलर उस सीप को आप लगाएंगे वो नीचे धरती पे आ जाता है। ये करामात हमने पॉल फार्मिंग में की है, जो कई लोग जानते हैं कि ये पति पत्नी मिलके 26 साल से पॉल फार्मिंग कर रहे हैं। भारत में हर जगह सीप है, बस ये है कि पानी पोल्यूशन होने के साथ अब ऐसा है कि पहले मोती 2 साल में आ जाता था, अब दिक्कत ये हो जा रही कि 2 साल में नहीं आएगा, 4 या 5 साल लेगा एक मोती। बहुत अच्छा मोती अगर आपको चाहिए, उम्दा मोती, तो वो 4-5 साल लेगा आने के लिए। जो मोती उगा रहे हैं ना हम लोग, वही मोती नेचुरल मोती है जो हर इंसान पहन सकता है। ये मोती हम नहीं बनाते हैं, मोती सीप बनाता है। क्यों ना हम भारत में उगे मोती को पहने, हमारा किसान जो उगा रहा है उसी से खरीद के पहने, तो और अपने भारत का पैसा बाहर नहीं जाएगा। जो किसान अब पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा मौका होगा कि हाँ, जो भारतीय लोग है भारतीय मोती पहन रहे, भारत के लोगों से लेके। पहले होता था कि समुन्द्र में सीपियों को मार के मोती निकाले जाते थे, आज हर सीप में हम अपने कोई भी

मोती की खेती 4-5 सालों से कर रहा हूँ, और इसकी ट्रेनिंग हमने BHU में अशोक मानवानी जी से ली थी। तो अभी कुछ सफलताएं हमें हुई हैं, वीडियो वगैरह देखते रहते थे तो हमारे मन में आया कि इसे मैं भी इसको कर सकता हूँ। ऐसे मैं मेडिसिनल और एरोमेटिक्स की खेती करता हूँ और उसी से जुड़ा लगभग भी है, तो हमको लगा कि इसे इसमें करना चाहिए। फिर मैंने उसके ट्रेनिंग बजाते ली, हमें अच्छा लगा और उसके बाद से मैंने लगातार प्रयास करते रहा, और प्रयास करने के बाद हमको इस बार सफलता मिली है। कुछ मोती हमारे आए हैं 1.5 साल के बाद, तो हमको लगा कि इसे और इसको और बढ़ाना चाहिए। सीप मैंने अपने यहाँ, ये एक डैम है वहीं से मैंने उपलब्ध कराया था, बनारस से जाली वगैरह और जो सांचे रहते हैं उनको लाया था। हमारे यहाँ एक तालाब है मछली का, तो उसी में मैंने डाला था। पहली बार तो मैं असफल हो चुका था, 500 पीस डाला था। फिर दूसरी बार जब उसमें डाला तो मुझे सफलता 1.5 साल के बाद को निकाला है, तो वो हमको मिला है। स्ट्रगल है लेकिन फिर भी लग रहा है कि अब हम सफल हो जाएंगे। कोई किसान शुरुआत करता है तो सीप अगर वो उपलब्ध करा लेता अपने क्षेत्र में, ढूंढ करके सीप अगर खोजेंगे तो मिल जाएगा, और नहीं तो फिर ऐसे खरीदने के बाद तो काफी महंगा पड़ता है। उसमें कोई 50 रुपए के लगभग में लोग लेते हैं एक सीप का, और उसमें कितना परसेंटेज मरेगा जिएगा इस पर कोई गारंटी नहीं है। तो इसके चलते अगर जो भी किसान करना चाहेंगे, मैं उनको कहूंगा कि अपने आसपास के तो जो तालाब हैं या डैम हैं या नदियां हैं उससे वो ढूंढें। हमने 2-3 साल तक इस पर अथक प्रयास किया, तब जाकर के हमें सफलता मिली है। और हमने BHU में जो ट्रेनिंग ली थी, हम लोग जो ऑपरेशन कर करके 1,000 सीप डाले थे, तो उसका अभी भी वहां पर ट्रायल चल रहा है। अगर वो तालाब में किया जाए तो ज्यादा बेटर रहता है, टैंक में थोड़ा देख रेख ज्यादा होता है पानी का और मेंटेनेंस थोड़ा ज्यादा होता है। तालाब में जब करते हैं हम लोग तो ज्यादा देख रेख की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें जाली बनाना पड़ता है और जाली बना करके उसमें ऑपरेशन किया जाता है, उसको प्रत्यारोपित किया जाता है, वो सांचा जो रहता है उसको।

और चुनौतियां हैं कि बहुत सारे सीप जो हैं आप बाहर से अगर लाते हैं तो आपके वातावरण में वो सेट कर पाते हैं कि नहीं पाते हैं, उनका डेथ परसेंटेज कितना है, ये सब देखना पड़ता है। अगर वो आपके पानी में वो सेट कर जाता है तो आपकी सफलता निश्चित है कि हो जाएगी। पहली बार तो मैं हतोत्साहित हो गया था, शुरू बार में एक भी नहीं आया तो, और मैं थोड़ा जिद्दी टाइप का आदमी हूँ कि जिसको ठान लेता हूँ उसको करता ही करता हूँ। फिर दोबारा प्रयास किया, हमने सोचा कि नहीं इसको कुछ लंबे समय तक छोड़ना चाहिए ताकि जितना समय तक लंबा छूटेगा उसमें शाइनिंग ज्यादातर आएगा। जैसे सीप अगर मर गया तो वो तो बना नहीं पाएगा, अगर सीप जिंदा रहा तो आपको काफी उसमें अथी सफलताएं मिल पाती। अभी तक तो हमने लगभग मोटा मोटी 50,000 रुपया लगा चुके हैं, और लाभ के मामले में बताऊं तो अभी मेरा पहला लोट निकला है जो 30-35 आ गया है। मैंने 150 डाला था तो 30-35 की सफलता हमें मिली है। अब इसको और बढ़ाना चाहेंगे, अभी बिक्री तो मैंने नहीं की है लेकिन अब मार्केटिंग करके उसको देखेंगे।

0: मोती उगता है, आकृतियों वाला बहुत अच्छा उसमें मोती आता है और ये लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आज भारत में कई जगह पे मोती उत्पादन शुरू हो चुका है बड़े पैमाने पे। सरकार की कई योजनाएं भी आ रही है, आपको इसमें दी जा रही है जो 2 लाख 5 लाख रुपए आप अपने अपने पोर्टल में देख सकते हैं। यह मोती जो है बड़ी आसानी से तालाबों में उगाया जा सकता है। मोती उगने में 50 रुपए मात्र खर्चा आता है, समय जो है 1.5 साल 2 साल के बीच में इसमें समय लगता है। इन मोतियों को मछली पालन के साथ भी हम लोग कर रहे हैं। मैं अशोक मनवानी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो मोती पालन का हमारा प्रोजेक्ट लगा हुआ है, यहाँ पे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। हमने 10 पेटेंट लिए हैं और ये सब किसान भाइयों के लिए है कि किसान भाई आप लोगों को कुछ भी दिक्कत आती है तो हम जो चाहेंगे कि मोती पालन पे आप हमसे भी सहयोग ले, हमसे फोन से भी पूछ सकते हैं कि किस तरह से मोती उगता है या कौन सी सीप कहाँ मिलती है। गाँव में सीपियाँ आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो मैं किसान भाइयों से चाहूंगा कि इस नई प्रकार की खेती के ऊपर ध्यान दीजिए और अपने रोजगार को आगे बढ़ाइए जिस तरह से हम कर रहे हैं। भारत को मोतियों की बहुत आवश्यकता है। 25 से 30 करोड़ डॉलर्स का हमारे देश में प्रति वर्ष हजारों करोड़ का 26,000 करोड़ का मोती जो है विदेश से हमारे को लाना पड़ता है। तो हमारे देश में सीपियां बहुत है, सिर्फ ज्ञान की कमी है। ज्ञान में कोई भी दिक्कत आती है तो हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। यहाँ जो हमारा रिसर्च सेंटर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है, इंडियन पर्ल कल्चर से, मैं अशोक मनवानी, मेरा मोबाइल नंबर है 9271282561। धन्यवाद।
1: नमस्ते सभी को, मेरा नाम है राम दिनेश अनुरे। आज मैं आपका सबके सामने एक बहुत ही इनोवेटिव और प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर टेक्निक के बारे में बात करना चाहता हूँ, इंटीग्रेटेड पर्ल फार्मिंग। तो ट्रेडिशनल पर्ल फार्मिंग के मुकाबले इंटीग्रेटेड पर्ल फार्मिंग एक स्मार्ट और सस्टेनेबल मॉडल है जिसमें हम एक ही वाटर इकोसिस्टम या पॉन्ड में मोती के साथ साथ फिश या डक फार्मिंग भी कर सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा बड़ा फायदा ये है कि रिसोर्सेस फुल्ली ऑप्टिमाइज हो जाते हैं। जैसे फिश या डक्स को जो वेस्ट होता है वो पानी में नेचुरल न्यूट्रिएंट्स फाइटोप्लैंक्टन बढ़ाता है जो मसल्स सीप का खाना है। इससे अलग अलग अलग से फीडिंग कॉस्ट बचती है, पानी का इकोसिस्टम बैलेंस रहता है और एक ही जगह से मल्टीपल इनकम सोर्सेज जनरेट होता है। मेरा इस फील्ड में प्रैक्टिकल एक्सपोजर

मैं मोती की खेती उत्पादन कर रहा हूँ। मोती की खेती करने से मुझे बहुत लाभ हो रहा है और मोती की खेती करके मैं बहुत खुश हूँ। मोती की खेती करना बहुत आसान है, ज्यादा मेहनत नहीं लगती है और उत्पादन अच्छा आता है। डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा होती है। मत्स्य पालन कोई करता हो तो साथ में अगर मोती भी करे तो उससे उसकी आय दुगुनी हो, उसी समय समय भी कम लगेगा। और प्रधानमंत्री जो चाहते हैं हर किसान की आय दुगुनी हो जाए, वो भी सब

0: लोकेंद्र भाई, अभी हमारे सभी किसान बहन भाई सुन रहे थे रोमेंद्र नागर और विनयपाल नागर से ये रागनी। और इसी के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को हमारी
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुत कथा थे तुषार पराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

और श्रोताओं, अब गजल और कव्वाली का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: 19 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा। पीएम सूर्य

0: प्राथमिकता। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने डीडीए कर्मजीवी आवास योजना का शुभारंभ किया। दिल्ली नगर निगम ने मजनू का टीला क्षेत्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया और दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाइयां और चिकित्सा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अब समाचार विस्तार से।
1: और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वो बदलाव की मांग कर रहे हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की नेतृत्व वाली सरकार ने युवा नेतृत्व वाले विकास के मंत्र को विकसित भारत को मजबूत करने की नींव बनाया है।
2: नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो इस देश के युवा को राष्ट्र का

विस्तार से समीक्षा की गई। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग डिजिटल तकनीक और बेहतर कार्य प्रणाली के जरिए लोगों तक तेज, आसान और नागरिक केंद्रित सरकारी सेवाएं पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि देश का

पेशेवरों के लिए घर का स्वामित्व अधिक किफायती और सुलभ बनाना है तथा राष्ट्रीय राजधानी में नियोजित शहरी विकास और समावेशी विकास के प्रति डीडीए की प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली है और एक छात्र को मामूली चोटें आई हैं। अग्निशमन सेवा ने कहा कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और बचाव अभियान जारी है। दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों की मॉनसून स्वास्थ्य तैयारी की समीक्षा के दौरान आवश्यक दवाइयों का पर्याप्त भंडार, पैथोलॉजी और जांच सुविधाएं तथा चिकित्सा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने मॉनसून के दौरान डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया सहित अन्य मौसमी बीमारियों के खतरे को देखते हुए सभी अस्पतालों को पूरी तरह सतर्क और तैयार रहने को कहा है। इसके अलावा अस्पतालों की नियमित निगरानी और किसी भी स्तर की लापरवाही पर कड़ी विभागीय कार्रवाई के भी निर्देश जारी किए गए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।

110 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे महिलाओं के श्रृंगार से जुड़ी हुई। जी हाँ श्रोताओं, महिलाओं का श्रृंगार केवल बाहरी सुंदरता का प्रतीक नहीं होता। हम सभी जानते हैं कि ये श्रृंगार एक महिला की संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति, परंपरा और व्यक्तित्व की भी पहचान होता है। अगर हम पुराने जमाने की बात करें या प्राचीन काल की बात करें, तो तभी से भारतीय नारी

तो श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नारी के श्रृंगार की। प्रेम है, प्रतीक्षा है और अपनत्व का भाव भी इस गीत के माध्यम से नजर आता है। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि श्रृंगार और गहने किस तरह से भारतीय संस्कृति को और भी समृद्ध बनाते हैं। महिलाओं के बिंदी, सिंदूर, काजल, मेहंदी, चूड़ियां, पायल, कितने सारे आभूषण जिनकी अपनी चमक है, अपनी खनक है और वहीं अपनी महक भी है। तो श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं अब एक और श्रृंगार से ही जुड़ा हुआ ये गीत।

जख्मी दिल फिल्म से लिया गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। श्रोताओं, पायल की मधुर आवाज जो मन को छू जाती है, इसके घुंघरुओं का घर आंगन में बजना मानो किसी उत्सव उल्लास और प्रेम का भाव अपने साथ लेकर आया हो। फिर वो घर में गूंजी किलकारी हो, उसके पैर में बजने वाले पायल के घुंघरू हो, या फिर घर आंगन को अपनी मौजूदगी से महकाने वाली प्रेमिका या फिर स्त्री हो। आइए श्रोताओं, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत।

श्रोता, वंश फिल्म से लिया गीत अभी आपको सुनवाया लता मंगेशकर की आवाज़ में। इस गीत को लिखा था समीर ने और संगीत से संवारा था आनंद मिलिंद ने। नारी के आभूषण जिनकी अपनी भाषा है, अपनी बोली है। कई बार श्रोताओं ऐसा होता है ना कि शब्दों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आपके भाव, और मन के भाव को अपने साथी तक खामोशी से पहुँचाना हो तो फिर पायल की आवाज़, चूड़ियों की खनक और गजरे की महक आपके मौन का स्वर बन जाते हैं। श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत से सजा कार्यक्रम गीत मालिका। आइए अलका याग्निक और सोनू निगम के युगल स्वर में सुनते हैं ये गीत।

श्रोता लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। और अपने कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं महिला के श्रृंगार से जुड़ी हुई, और ये श्रृंगार जो है वो महिलाओं का ना केवल सौंदर्य है बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है, उसके कई सारे भावों को भी प्रकट करता हुआ नजर आता है। और बात जब भारतीय महिला के श्रृंगार की हो तो उससे भारतीय सिनेमा कैसे अछूता रह जाता, और यही जुगलबंदी आज हमने आपके साथ पेश की है, जहाँ हमने देखा कि कई सारे हिंदी फिल्म में ऐसे गीत लिए गए जिसमें नारी का श्रृंगार तो है ही और उसके साथ साथ उसके भाव भी प्रदर्शित किए गए हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि महिला का जो श्रृंगार और हिंदी फिल्मों के जो गीत रहे हैं उनका गहरा और अटूट रिश्ता रहा है। समय कोई भी रहा हो, गीतों में हमने अक्सर देखा है कि नायिकाओं का जो रूप, सौंदर्य और उनके आभूषण और साथ ही साथ जो 16 श्रृंगार है हमेशा गीतकारों की कल्पनाओं में कहीं ना कहीं शामिल रहे हैं, और यही है भारत की परंपरा, भारतीय संस्कृति। आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और अब आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत। आवाज है कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की।

0: श्रोताओं, अब त्योहारों का मौसम भी आ रहा है, तो खूब श्रृंगार कीजिए, चहकिए, दमकिए, महकिए और खूब सारा श्रृंगार करते रहिए। इसके साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्ष

0: दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बेहतर रेल सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीक के कारण रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर समस्या से निपटने के महत्व पर भी बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका। दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। आज लोकसभा की कार्यवाही 3 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के विचार सुने और सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से कार्यवाही बाधित करने के बजाय विस्तृत चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
4: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
5: हम जनरल मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से जनरल मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि सरकार से नीट परीक्षा लीक मामले पर युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिलने पर वे अपना अनशन समाप्त कर

0: देंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में श्री वांगचुक ने कल रात अस्पताल में उनसे मिलने के लिए दोनों मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रूपये से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने के आरोप में देश भर में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच से बाहर कर दिया है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गुन ने कहा कि सरकार शिकायतों के आधार पर ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तोतापुरी आमों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तीनों राज्यों में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की आय में लगातार हो रही गिरावट की शिकायतों के मद्देनजर जारी किए गए हैं। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक में मंदिर प्रबंधन, दान प्रणाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, ट्रस्ट में रिक्त पद भरने और धार्मिक समिति के पुनर्गठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रस्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था पहले की तरह ही अडिग है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या स्थिर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति और पेंशन से संबंधित संशोधनों की सिफारिश करेगा। आयोग अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो 4 वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवामुक्त हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी इसी तरह के मौसम की स्थिति बने रहने का अनुमान है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: नामची जिले के NHPC की टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू दल काम कर रही है। कम विजिबिलिटी और मीथेन गैस के लीकेज के वजह से शवों को निकालना मुश्किल हो गया है। इस बीच सिक्किम सरकार ने मरने वालों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को सौंप दिए है। केंद्र सरकार के अलावा सिक्किम सरकार और NHPC ने मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना के समय टनल के अंदर कम से कम 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: कश्मीर में आज अनंतनाग जिले

0: के लालचौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतक पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से निर्मित माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस मालवन को शामिल किया है। ये नौका जलमग्न निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से निर्मित ये नौका आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बल देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिया शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केज से मुलाकात की। श्री सोनोवाल ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए परस्पर संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। इस बीच पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के युशी तनाका से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लक्ष्य सेन ने पहला गेम अपने नाम कर लिया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
1: बम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़ककर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई मिड कैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे के नुकसान से 96.57 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर रहा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनाना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for making the dream of Vikasit Bharat a mass movement with youth playing a key role in it. Government reiterates readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue. In Parliament, criticizes attempts to use youth protests for political gains. Opposition disrupts proceedings in both houses, demands resignation of the Education Minister before discussion. Delhi High Court seeks responses from centre and police on pleas alleging use of excessive force on protesters during Parliament March. Railway Minister Ashwini Vaishnav says train accidents declined sharply with improved rail safety, infrastructure maintenance and use of modern technologies. The US blames Iran for the naval blockade against Saudi Arabia in the Red Sea by Yemen's Houthi group. And in China Open badminton, PV Sindhu and Ayush Shetty enter singles pre-quarterfinals. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Vikasit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Vikasit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries, as well as senior officials from the Prime Minister's office. The Prime Minister underscored the importance of tackling the serious issue of drug abuse among youth. He also stressed the importance of promoting technology and fostering innovation through startups in the sports sector. Mr. Modi also highlighted that the widespread adoption of initiatives such as the PM Kusum scheme by farmers can bring transformative changes to the agriculture sector. The government today reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in Parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government was prepared for a meaningful debate on the issue, involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youth.
3: The government is fully prepared for a discussion on the NEET paper leak and we have maintained this position from the very first day. I request that the Honorable Speaker, after consulting with the floor leaders of all parties, decide when the discussion should be held, how long should it last, on which day should it take place and under which rule should it be conducted. The government wants all of us to come together and hold a meaningful discussion for the future of the country's youth.
2: Mr. Rijiju's remarks came as both Houses of Parliament witnessed repeated disruptions by the opposition for the third consecutive day today over various issues, including the NEET paper leak case and student protests. Later, the Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day. The opposition demanded resignation of the Union Education Minister before discussion. Speaking in the Rajya Sabha, the Parliamentary Affairs Minister accused the Congress of avoiding a debate by imposing fresh conditions despite the government's willingness to discuss the issue.
3: From the very beginning, the Congress party also said that it wanted a discussion and the chair has expressed the same. However, instead of allowing the discussion to take place, the Congress is once again looking for excuses by imposing conditions. When the government itself has clearly stated that it is ready for a discussion, there is no need to attach additional conditions. By doing so, the Congress appears to be creating another pretext to prevent the discussion from taking place. This should not be done.
2: Leader of the opposition Mallikarjun Kharge said the discussion could not proceed without the resignation of the Union Education Minister.
4: If there is to be a fair discussion, the Education Minister should resign. Until the Minister resigns, an impartial discussion cannot take place here. I urge the government to ensure that the Minister submits his resignation.
2: We have more from our correspondent.
5: On the third consecutive day of monsoon session, the proceedings of both the Houses of Parliament were disrupted by repeated adjournments following opposition uproar. Due to disruption, both Lok Sabha and Rajya Sabha failed to transact any substantive business. Despite repeated assurance from the government side that it is ready to discuss issues related to NEET paper leak case, the opposition continued with their protest. Today, the Lok Sabha was adjourned thrice and Rajya Sabha was adjourned four times. In Lok Sabha, Speaker Om Birla said he heard the views of both sides and noted the government's willingness to hold a discussion with an open mind. He urged opposition parties to participate in a detailed debate instead of disrupting proceedings. The Lok Sabha also passed a resolution to suspend Trinamool Congress MP Kalyan Banerjee for the rest of the monsoon session for using inappropriate language against women MPs. Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
2: Defence Minister Rajnath Singh has expressed concern over the ongoing protests in Delhi, saying the centre is deeply sensitive to the sentiments and concerns of the youth and is ready to listen and address every concern raised by students. Mr. Singh was talking to media in New Delhi. The minister alleged that some individuals are attempting to use the students and youth as a political tool.

0: जन आंदोलन बनना चाहिए और मुल्क के नौजवानों को इस नज़रिए को बुनियाद फराहम करनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने नई दिल्ली में विकसित भारत अहदाफ के लिए मुतअल्लिका शोबों और देही तरक्की, ज़राअत और समाजी बहबूद की पेशरफ्त के जायजे के सिलसिले में सेक्रेटरियों के साथ एक आला सतह मीटिंग की सदारत करते हुए ये बात कही। इस मीटिंग में काबीना सेक्रेटरी, अहम वजारतों के सेक्रेटरी साहिबान के साथ साथ वज़ीर आज़म के दफ्तर के सीनियर अहदेदारान ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान जनाब मोदी ने कहा कि अवाम की ज़रूरत के तहत तैयार करदा इस्लाहात के नफाज में तेज़ी आनी चाहिए और इनसे बामाना तब्दीली पैदा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लाहात का मकसद महज हुकूमत के कामकाज में बेहतरी लाना नहीं बल्कि एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की जानिब मुल्क के सफर को तेज़ करना है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी मुजाहरे पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मरकज नौजवानों के जज्बात व खदशात के हवाले से नहायत हसास है और तलबा के जायज़ मसलों को सुनने और इसके हल के लिए पुरज़म है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि कुछ लोग अपने सियासी मफाद के लिए तलबा के एहतजाज को इस्तेमाल कर रहे हैं।
1: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: पार्लियामेंट में अपोजिशन के हंगामे पर वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत ने हर मामले पर बामाने बहस पर रजामंदी जाहिर की है लेकिन अपोजिशन पार्लियामेंट के बजाय सड़कों पर इसके हल की गैर मुनासिब कोशिश कर रही है। सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने आज कहा कि तलबा की जानिब से उठाए गए नीट पेपर लीक मामले को सियासी रंग नहीं दिया जाना चाहिए। नई दिल्ली में आज शाम मीडिया से खिताब करते हुए जनाब नड्डा ने कहा यह जांच का मौजू है जिस पर वसी तर तबादला ख्याल की जरूरत है। जनाब नड्डा ने मजीद कहा कि यह एक संगीन मसला है जिस पर संजीदा बातचीत की जरूरत है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई नीट पेपर लीक मामले और तलबा के एहतजाज समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन की जानिब से आज मुसलसल तीसरे रोज बार बार रखना अंदाजी के पेश नज़र दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में जब ऐवान की कार्रवाई दूसरी मरतबा मुलतवी होने के बाद दोपहर 2 बजे फिर शुरू हुई तो अपोजिशन अरकान ने नीट मामले पर नारेबाजी जारी रखी। एहतजाज जारी रहा तो ऐवान की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे कबल दिन में कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने तलबा के एहतजाज का मामला उठाया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने यह बात दोहराई कि हुकूमत मुकर्रर करदा पार्लियामानी जाब्तों के तहत और मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल को जहन में रखते हुए सभी फरीकों के साथ बामाने बहस के लिए तैयार थी।
2: सरकार नी पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी नीट मामले और दीगर मामलात पर बार बार रखना अंदाजी हुई। कई मरतबा कार्रवाई मुलतवी किए जाने के बाद जब ऐवान की कार्रवाई फिर शुरू हुई तो डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने यह कहते हुए अपोजिशन से तआवुन करने की अपील की कि हुकूमत बहस के लिए तैयार है। ऐवान बाला में खिताब करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर यह कहते हुए बहस से बचने का इल्जाम लगाया कि हुकूमत की इस मामले पर बहस पर रजामंदी के बावजूद उसने नई शरायत रख दी। ऐवान के रहनुमा जेपी नड्डा ने अपोजिशन के तर्ज अमल की यह कहते हुए नुक्ताचीनी की कि यह गैर जिम्मेदाराना और जमहूरी अकदार के मुनाफी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत शफाफियत और जवाबदेही के तई पुरअज़्म रही है। अपोजिशन के रहनुमा मल्लिका अर्जुन खड़गे ने यह कहते हुए तालीम के मरकजी वजीर के इस्तीफे का मुतालबा किया कि इसके बगैर बहस नहीं हो सकती।
2: अगर फिर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। जब वो राजीनामा नहीं देंगे चर्चा यहाँ नहीं होगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को वो रिजिग्नेशन दिलाओ।
0: शोरगुल जारी रहने के दरमियान राज्यसभा की कार्रवाई भी कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे पहले राज्यसभा में सिक्किम में NHPC तिस्ता स्टेज 6 पर बिजली प्रोजेक्ट के तहत ज़ेर तामीर सुरंग में

लौटना। यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए, साथ ही बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर जोर दिया। इसके अलावा खेलों को बढ़ावा देने, किसान हित और कौशल विकास पर ध्यान देने की भी बात कही। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि एक गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल दुर्घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में

0: कैमरा नहीं है मेरे पास, वरना एक गजब का फोटोग्राफ मिल जाता।
1: जी, मैं
2: पानी की चोट तो बर्दाश्त कर गया, लेकिन ये बाल्टी फेंककर मारी तो।
1: मुझे माफ कर दीजिएगा, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको अपने नौकर समझी थी।
2: जी
1: जी, मेरा मतलब है मुझे अपने नौकर पे बहुत गुस्सा आया था
2: और पानी मुझ पे डाल दिया, वो भी कड़ाके की सर्दी में।
1: अंदर आइए ना
2: जी, आपका गुस्सा उतर गया।
1: मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, लाइए आपके कपड़े दे दीजिए, मैं सुखा देती हूँ। शर्ट भी दे दीजिए
2: जी।
1: ठहरिए,

0: करके लाती हूँ।
1: अजी सुनिए
0: जी,
2: अगर मुझे निमोनिया हो गया तो
0: इलाज हो जाएगा, डॉक्टर का घर है ना।
2: और आप?
0: मैं उनकी बेटी हूँ।
2: तो एक प्याला गर्म चाय भी हो जाए?
0: चाय जरूर।

तो अभी आपने ये गीत सुना लता माफ़ कीजिएगा किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म थी आराधना। और आइए अब बढ़ते हैं किशोर कुमार की ही आवाज़ में ये अगला गीत सुनते हैं, फिल्म लावारिस से।

साथियों, अभी आपने सुना फिल्म अमर अकबर एंथनी से ये गीत, जिसे गाया था गायक किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और मुकेश ने। और आइए अब सुनते हैं फिल्म सरगम से ये अगला गीत। गायक हैं मोहम्मद रफ़ी और गायिका लता मंगेशकर।

0: अभी आपने सुना फिल्म सरगम से ये गीत, और गायक थे मोहम्मद रफ़ी और गायिका लता मंगेशकर। और आइए अब अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में।
1: बरसों बाद उनकी मैं निकली हूँ, ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
1: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
2: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
1: भूल गई ना ना,
2: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

आइए अब सुनते हैं ये अगला गीत। फिल्म रोटी कपड़ा मकान और गायक लता मंगेशकर, मुकेश, चंचल और जानी बाबू की आवाज़ में।

उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी, मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी, एक हम

0: से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए, साथ ही बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर जोर दिया। इसके अलावा खेलों को बढ़ावा देने, किसान हित और कौशल विकास पर ध्यान देने की भी बात कही। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को CCTV फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल दुर्घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। संचार राज्य मंत्री डॉ चंद्रशेखर पेमासानी ने कहा है कि भारत 6G अलायंस अब 90 सदस्यों वाला संगठन बन गया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि ये अलायंस उद्योग और शिक्षा जगत के सहयोग से चलने वाला संगठन है। इसमें दूर संचार कंपनियां, उपकरण निर्माता, स्टार्टअप, शोध संस्थान और शिक्षण संस्थान शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान स्कोपिये शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी भारत के थे, लेकिन सत्य और अहिंसा का उनका संदेश समस्त मानवता का है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने मनीला, फिलीपींस में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात

0: झारखंड, कर्नाटका, ओडिशा एंड राजस्थान। In the China Open badminton tournament in Changzhou, PV Sindhu, Ayush Shetty and Lakshya Sen have advanced to the singles pre-quarterfinals. And that is the end of this news bulletin.
1: स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 2:10 हो चुके हैं और अब वक्त है अगले कार्यक्रम गीत बहार का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत बहार।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान

मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए, साथ ही बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर जोर दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मानसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। संचार राज्य मंत्री डॉ चंद्रशेखर पेमासानी ने कहा है कि भारत 6G अलायंस अब 90 सदस्यों वाला संगठन बन गया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि ये अलायंस उद्योग और शिक्षा जगत के सहयोग से चलने वाला संगठन है। इसमें दूर संचार कंपनियां, उपकरण निर्माता, स्टार्टअप, शोध संस्थान और शिक्षण संस्थान शामिल हैं। भारत ने इबोला से बचाव की तैयारियों को मजबूत करने के लिए केन्या को चिकित्सा सहायता की पहली खेप भेजी है। केन्या में भारत के उच्चायुक्त डॉक्टर आदर्श स्वाइका ने नैरोबी में 4.5 टन चिकित्सा सामग्री केन्या के स्वास्थ्य मंत्री एडन डुएले को सौंपी। इस सहायता में पीपी किट, सैंपल ले जाने की किट, इंफ्रारेड थर्मामीटर, फेस शील्ड, सुरक्षा जूते और संक्रमण से बचाव के अन्य जरूरी सामान शामिल हैं। नैरोबी स्थित भारतीय उच्चायोग ने बताया कि चिकित्सा सहायता की दूसरी खेप भी अगले कुछ दिनों में पहुंचाई जाएगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने मनीला, फिलीपींस में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 आज से स्कॉटलैंड में ग्लासगो में शुरू होंगे, जो 2 अगस्त तक जारी रहेंगे। इस बार प्रतियोगिता में 74 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारतीय दल के सदस्यों की संख्या 125 है। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में 10 खेलों को शामिल किया गया।

15 सेकंड। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गजल गीत। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति कलाकार हैं जगजीत सिंह, बोल हैं राजेश रेड्डी के और संगीत भी दिया है जगजीत सिंह ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

ये जो गजल अभी आप सुन रहे थे, कलाकार थे जगजीत सिंह। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गजल। जो बोल हैं, गुलकार हैं मिर्ज़ा गालिब साहब, और संगीत दिया है निहारिका सिन्हा ने, और गायक कलाकार हैं पंडित अनूप जलोटा और निहारिका सिन्हा।

और एआईआर लाइव न्यूज 24/7 पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गजल गीत। और कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गजल कलाकार

हैं सोनू निगम, गुलुकार यानी कि जो रचना है वो है हर्ष ब्रह्मभट्ट की, और संगीत दिया है अनूप जलोटा ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

और इसी के साथ आज का गजल गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है।

மனசினுள்ளே மகிமகள் வந்தால் மகேஸ்வரன் வருமன்ன மணிகள்.

अब आप सुनेंगे भगवान कृष्ण को समर्पित एक रचना, स्वर चेरतला आर गोपालन नायर और के राधामणि के हैं।

0: इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: जी, आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। समय हुआ है 4:20 और 14 सेकंड। कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत आइए आप सुनते हैं ताल वादक काचेरी। कलाकार हैं येल्ला वेंकटेश्वर राय। आइए सुनते हैं इनसे मृदंगम वादन।

0: कर्नाटक संगीत ताल वाद्य कचेरी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे येला वेंकटेश्वरा राय का मृदंगम वादन। इसी के साथ आज का नाद ब्रह्म कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
0: वंदे मातरम।

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आज बृहस्पतिवार है, शक सम्मत 1948 के श्रावण मास की पहली तिथि, तदनुसार 23 जुलाई 2026। इस समय सुबह के 4:53 और 48 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 5:30 पर आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत उस्ताद डॉक्टर मुज्तबा हुसैन का राग नटभैरव। चिंतन कार्यक्रम में 6:40 पर आज का विषय रहेगा महात्मा बुद्ध के सुख दुख पर विचार।

सुबह 7:10 पर संगीतिका कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे करिश्मा शर्मा के भजन, और 7:30 पर आप सुन सकेंगे हिंदी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। आठ 8:45 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा के अंतर्गत आप सुनेंगे नीता माथुर का गायन। आज सुबह 9:15 पर कार्यक्रम उद्योग पत्रिका के अंतर्गत आज का विषय रहेगा व्यवसाय परिवर्तन और उत्कृष्टता के लिए वित्तीय रणनीति। आमंत्रित विशेषज्ञ होंगे अभिषेक शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट CFO, विनिर्माण वित्त विशेषज्ञ से कमल किशोर की बातचीत आप सुन सकेंगे। हमेशा की तरह सुबह 9:30 का समय रहेगा कार्यक्रम पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का, और दिन में सुबह 10:10 पर आप सुनेंगे आपकी पसंद फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम।

0: स्वरांजलि कार्यक्रम का समय रहेगा 11:10 और दोपहर 12:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन, जो कि महिला कार्यक्रम होता है, और दोपहर 1:10 पर कार्यक्रम होगा एक ही फिल्म से। तो अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 5 बजने को हैं, अब आप थोड़ी देर में सुनेंगे समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और अन्य क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन बनना चाहिए और युवा इसकी सबसे बड़ी ताकत होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सुधारों का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए। उन्होंने बदलते समय के साथ शासन व्यवस्था में भी बदलाव पर बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के

0: पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के हंगामे के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
1: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सियानोस्का दाओकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है और यह गर्व की बात है। स्कोपजे में आकाशवाणी की संवाददाता शुभश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाओकोवा ने कहा कि वह भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से पहले ही प्रभावित थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर उत्तरी मैसेडोनिया में हैं। इस यात्रा के दौरान वे वहां की प्रसिद्ध ओहरीड झील का भी दौरा करेंगी। भारत ने इबोला से बचाव की तैयारियों को मजबूत करने के लिए केन्या को चिकित्सा सहायता की पहली खेप भेजी है। केन्या में भारत के उच्चायुक्त डॉक्टर आदर्श स्वाइका ने नैरोबी में 4.5 टन चिकित्सा सामग्री केन्या के स्वास्थ्य मंत्री एडेन डुएल को सौंपी। इस सहायता में पीपीई किट, सैंपल ले जाने की किट, इंफ्रारेड थर्मामीटर, फेस शील्ड, सुरक्षा जूते और संक्रमण से बचाव के अन्य जरूरी सामान शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया में मारे गए 4 अमरीकी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। डेलावेयर के डोवर एयरफोर्स बेस पर आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रपति ट्रंप ने सैनिकों को सलामी दी। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर परिवार को सौंपे गए। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। राष्ट्रमंडल खेल 2026 आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे, जो 2 अगस्त तक जारी रहेंगे। इस बार प्रतियोगिता में 74 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। भारतीय दल के सदस्यों की संख्या 125 है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज हरारे में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। और मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष अब्राहम। Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries, as well as senior officials from the PM's office. Government has reiterated its

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। सुबह के 5:10 और 18 सेकंड हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय है उष्टासन और योग से संतुलित जीवन। प्रस्तुत करता है योग विशेषज्ञ डॉक्टर हिमानी श्योखन।

सांस लेते हुए पीछे की ओर झुकने का प्रयास। इस बात का ध्यान रहे कि पीछे झुकते समय गर्दन में किसी भी प्रकार का कोई झटका ना लगे। पीछे की ओर झुकें और धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। अंतिम स्थिति में जांग को जमीन पर लंबवत रखते हुए सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींचकर रखें। अगर संभव हो तो पूरे शरीर का भार अपनी भुजाओं और पैरों पर टिकाए रखें। यह हमारी उष्ट्रासन की स्थिति होती है। बहुत लोगों में देखा गया है कि वह उष्ट्रासन नहीं कर पाते, तो इसके लिए आप अर्ध उष्ट्रासन का भी प्रयास कर सकते हैं। अर्ध उष्ट्रासन के लिए आपको कुछ नहीं, बस अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर टिकाएं और धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन और वक्षस्थल के भाग को पीछे की ओर ले जाएं और उस स्थिति में कुछ क्षण रुके और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ही आगे सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। तो यह अर्ध उष्ट्रासन की अभ्यास विधि है। उष्ट्रासन दृष्टि दोष में अत्यंत लाभदायक होता है, पर इसके लिए आपको उष्ट्रासन का अभ्यास प्रतिदिन करना जरूरी है और एक दिन एक सेशन में आप उष्ट्रासन का अभ्यास 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं। उष्ट्रासन करने के बाद आप विश्राम स्थिति में वापस आ जाएं और कुछ क्षण वहीं रुकें। विश्राम स्थिति या तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या आप दंडासन में भी विश्राम कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप प्रतिदिन उष्ट्रासन करने के अभ्यास से अपने दृष्टि दोष को कैसे दूर कर सकते हैं और अपनी आई साइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग।

0: किसी भी पोजीशन में और किसी भी काम को 20 मिनट से ज्यादा की अवधि में ना करें। 30 सेकंड का ब्रेक लेकर के आंखों को रिलैक्स किया, अपनी सांस को थोड़ी देर देख लिया, यानी थोड़ा आपे में आ जाना है, क्योंकि जो आपे में नहीं है फिर वो स्यापे में रहता है। तो हमें स्यापे में नहीं रहना,
1: जी
0: हमें
1: जी
0: आपे में जीवन जीना है।
1: जी
0: और हमारे गुरुदेव कहते हैं लैप जो है ना वो बच्चे को रखने के लिए होती है, टॉप को रखने के लिए नहीं
1: जी
0: होती
1: बिल्कुल
0: है ना। तो एक तो इसे लैपटॉप को लैप में नहीं रखना, पहली चीज। अभी तो
1: जी
0: बहुत अच्छी अच्छी बेड टेबल्स भी आ जाती हैं, उनको रख के, यानी जब आप गोद में लैपटॉप को रखते हैं तो ये आपके जितने भी प्रजनन अंग हैं उनको हाँ इफेक्ट करता है एडवर्स रूप में। तो गोद में या जेब में मोबाइल फोन रखना, इससे बचें। और सर्वाइकल, जहाँ हम सर्वाइकल की बात करते हैं, चाहे वो सर्वाइकल स्पैज्म हो जाता है कुछ लोगों को, कुछ को स्पॉन्डिलाइटिस है या सर्वाइकल पेन है, तो ऐसे में बहुत

读特里广播电台，听众朋友们，请收听 Rahat Fateh Ali Khan 唱的歌曲。